फिर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है के 5:58 हुए हैं। अब हमारी केंद्र से आज के प्रसारण

0: समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग
1: विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वासी सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन ईश्वर ने हमें जो ये जीवन दिया है वह केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांटने के लिए है।

जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये नहीं कि हमारे पास कितना धन या वैभव है, बल्कि ये है कि हमें एक और दिन अच्छे कर्म का अवसर मिला है। समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए हर क्षण को प्रेम, विनम्रता और सेवा के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब हमारे विचार पवित्र होते हैं, वाणी मधुर होती है और निष्काम हो जाते हैं हमारे कर्म, तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। हमें मिलने वाला प्रत्येक दिन हमारे हाथ में एक खाली पृष्ठ की तरह होता है, जिस पर हम अपने कर्मों से नई कहानी लिखते हैं। आइए हर दिन को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करें और एक ऐसा जीवन जिएं जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके, और हमारे प्रत्येक दिन में हम ऐसे कर्म करें कि रात को सोते समय मन में संतोष हो और प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव सदैव बना रहे।

चिंतन के बाद अब शुरुआत करते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की। सबसे पहले बात करते हैं श्री गणेश की। श्री गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि विवेक, धैर्य और बुद्धि के भी प्रतीक हैं। उनका स्मरण मन को स्थिर और मार्ग को सरल बनाता है। तो आइए सबसे पहले स्मरण करें भगवान श्री गणेश का।

भोलेनाथ के खेल निराले हैं। भोलेनाथ देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। सच्ची श्रद्धा और धैर्य रखने वालों पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। जो महादेव पर विश्वास रखता है, वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं।

बाबा बालकनाथ की कृपा जिस पर बरसती है उसके जीवन में विश्वास, साहस और संतोष का दीपक स्वयं जल उठता है। सच्चे मन से किया गया उनका

स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद केवल मनोकामनाएं ही नहीं बल्कि मन को धैर्य, श्रद्धा और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए सुने ये बाबा बालकनाथ जी का भजन।

जब मन श्रद्धा से भर जाता है तब मुख से निकलता है जय माता दी, और यही उद्घोष जीवन को नई किरण देता है। माता रानी की कृपा से हर अंधेरा उजाले में बदलने लगता है।

भक्ति संगीत का आनंद अभी आप ले रहे थे कार्यक्रम वंदना में। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आप सुनिए श्री रामचरित मानस से मानस गान का भाग 141।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का, दूसरा वर भी हे नाथ मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान से। ये 141वां भाग आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 6:50 हुए हैं सुबह की। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। शुप्या कार्यक्रम 7:40 पर आप सुनेंगे। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने। 9:00 से 10:00 तक आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। और इसी दौरान 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन रिले किया जाएगा। 10:00 कार्यक्रम गीतों का कारवां प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर सुनिएगा हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:00 आकाशवाणी शिमला से एक बार आप फिर सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार। 11:05 पर आज कुछ कव्वालियां सुनवाई जाएंगी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 11:30 पर। दोपहर 12:00 का समय रहता है कार्यक्रम सैनिकों के लिए के प्रसारण का। सुनो सखी बहनों का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 12:30 पर। 1:00 समाचार सुने जा सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली से। ये समाचार बुलेटिन रिले किए जाएंगे। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। इसी दौरान 3:00 प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। 5:00 तक लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आज कुछ गैर फिल्मी भजन सुनवाए जाएंगे। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवा मंच सुनेंगे। 5:30 पर आज बात होगी स्पोर्ट्स बीट्स के बारे में। 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन रिले किया जाएगा। 6:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मौजा गराइंदियां। 7:00 हिंदी में समाचार।

0: बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन एक बार फिर रिले किया जाएगा। रात 8 बजे सुनिएगा मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे असद भोपाली के लिखे कुछ फिल्मी गीत। 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिली किया जाएगा। 10 बजे रूपक सुनवाया जाएगा और 10:30 पर आप लुत्फ उठा सकते हैं पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। सभा के अंत में समाचार सुने जा सकते हैं। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन रिले किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये सभी समाचार बुलेटिन रिले किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय UPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्यां परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेंधनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्यां अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरंतरं गहनं भवति। डॉक्टर जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उप प्रधानमंत्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवस्य डॉक्टर पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूट आउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यंकतरालेन पराजित्य 54.59 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर

सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम सुबह सुहानी में सभी श्रोताओं का स्वागत। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही कहा गया है कि सुबह की शुरुआत जैसी होती है, अक्सर दिन की कहानी भी वैसी ही बन जाती है। यानी अगर दिन की शुरुआत अच्छी सोच से, अच्छी उम्मीद से भरी है, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अगर सुबह मुस्कुराकर शुरू हो तो पूरे दिन के रंग भी कुछ और ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। हर सुबह हमें ये मौका देती है कि बीते हुए कल की थकान को छोड़कर आज की नई कहानी लिखी जाए। और जब बात नई शुरुआत की, नए सपनों की, नई उम्मीदों की हो, तब याद आती है हमें अपनी सोच। अपनी सोच को हम अगर बदल दें तो हर कुछ पॉजिटिव हो सकता है, सब चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं और ज़िंदगी में जो कुछ हमें मुश्किल लग रहा है उसको आसानी से हम पार करके आगे बढ़ सकते हैं। और जब बात पॉजिटिविटी की हो तो संगीत से बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता।

जी, झूमते गाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और बीती बातों को भूल जाना चाहिए। कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के सुविचार की। श्रोताओं, चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, उनका एक बेहद सुप्रसिद्ध सुविचार है, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, यानी जिस दिन आप हंसी नहीं समझे वो दिन व्यर्थ गया। जी हाँ श्रोताओं, हंसी सिर्फ चेहरे का, मुस्कान सिर्फ चेहरे का एक भाव नहीं, बल्कि मन की ताजगी और सकारात्मक सोच की पहचान है। जीवन में चुनौतियां और गम आते रहेंगे, लेकिन अगर हम मुस्कुराना छोड़ दें तो हम वर्तमान की खूबसूरती भी खो देते हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी वजह हमें ज़रूर मिलती है जो हमें मुस्कुराने का अवसर देती है, इसलिए जीवन को हल्के मन से जीना और खुशियां बांटना और उनको बटोरना ही हर दिन को सार्थक बनाता है, बिल्कुल कुछ इस गीत की तरह।

जी बिल्कुल, गम छोड़कर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और गम पर अफसोस करते रहेंगे। कभी आपने देखा है श्रोताओं कि हम गम पर अफसोस कर रहे हैं और गम कम हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो गम जो है उन्हें भूल जाइए और खुशियों पर अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए रखिए। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, आज की बात करते हैं आगे। आज श्रोताओं, कैलेंडर पर जो ये तारीख दिख रही है, ये दिखने में बेशक आम सी लग रही है, साधारण सी, हर महीने की 8 तारीख जैसी लग रही है, लेकिन इस तारीख के पीछे छिपी हुई हैं कई कहानियां, और जो बिल्कुल खास हैं और आम नहीं है। चलिए खोलते हैं आज की तारीख वाला ताला और इस तहखाने को खोलकर आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ खजाना है आज विशेष में हमारे पास। सबसे पहले आज यानी 8 जुलाई की मुख्य घटनाओं की बात करें तो साल 1497 में वास्को डी गामा भारत के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर लिस्बन से रवाना हुए थे। बाद में इसी अभियान ने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग का रास्ता खोला। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्वालियर किले पर ब्रिटिश सेना के पुनः अधिकार के बाद आज ही के दिन यानी 8 जुलाई के दिन साल 1859 को लॉर्ड कैनिंग ने पूरे भारत में शांति बहाल होने की आधिकारिक घोषणा की थी। साल 1899 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रिंट सर्कुलेशन के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका का ये सबसे बड़ा समाचार पत्र है। इसका पहला अंक आज ही के दिन प्रकाशित हुआ था। ये समाचार पत्र आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक समाचार पत्रों में गिना जाता है। 8 जुलाई साल 1918 को भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में प्रांतीय स्तर पर सीमित स्वशासन लागू करने सहित कई

वैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया। आगे चलकर यही रिपोर्ट 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आधार बनी। 8 जुलाई साल 2002 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय और शीर्ष प्रांतीय स्तर पर अश्वेत खिलाड़ियों के लिए लागू कोटा प्रणाली समाप्त करने का फैसला किया, जिसके बाद टीम का चयन जो है उसका मुख्य आधार खिलाड़ियों की योग्यता को बनाया गया। 8 जुलाई साल 2005 को स्कॉटलैंड के ग्लेनिगल्स में आयोजित समूह 8 यानी G8 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के मुद्दों पर सदस्य देशों ने एक साझा सहमति व्यक्त की। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साल 2011 में श्रोताओं आज ही के दिन यानी 8 जुलाई के दिन नासा ने अपने 30 साल पुराने स्पेस शटल कार्यक्रम के तहत अटलांटिस को अंतरिक्ष शटल का अपना अंतिम और ऐतिहासिक प्रक्षेपण आज ही के दिन पूरा किया था और 8 जुलाई 2019 को भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण परीक्षण क्षेत्र में स्वदेशी एंटी टैंक नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण मिसाइल की मारक क्षमता और सटीकता की पुष्टि की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। ये थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन की और कार्यक्रम में आगे बात करेंगे कि इन खास हस्तियों के जन्म निधन हुए लेकिन इस गीत के बाद।

103.4 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। आज विशेष में आप बात करते हैं आज जन्मी खास हस्तियों की। साल 1912 में आज ही के दिन जन्म हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनेता बनारसी दास का। भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु। इनका जन्म साल 1914 में हुआ। 8 जुलाई साल 1937 में जन्मे पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिजा राज किशोर। साल 1946 में

जन्म हुआ गिरिजा व्यास का। ये भारतीय राजनीतिज्ञ, कवयित्री और लेखिका हैं। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिज्ञ और आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी। साल 1949 में इनका जन्म हुआ। साल 1949 में ही जन्म हुआ। लगभग 22 वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाले गेंगोंग अम्पांग का 8 जुलाई साल 1958 में जन्मी है हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर कभी कभी अमर अकबर एंथोनी, खेल खेल में और याराना जैसी कई सफल फिल्मों में यादगार अभिनय के लिए इन्हें जाना जाता है। सुनते हैं इन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।

आकाशवाणी धर्मशाला के साथ इस समय आप बने हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं सुबह सुहानी। श्रोताओ, आज ही के दिन जन्म हुआ साल 1972 में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में माने जाने वाले सौरभ गांगुली का, जिन्हें दादा कहा जाता है। चेतन आनंद साल 1980 में इनका जन्म हुआ। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ये भारतीय प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आनंद 2004, 2007, 2008, 2010 में चार बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और साल 2004, 2006, 2010 में तीन बार के दक्षिण एशियाई खेलों के पुरुष एकल चैंपियन हैं। अनीता कुंडू भी आज के दिन जन्मी है। साल 1991 में इनका जन्म हुआ है। भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। ये पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की। साल 2003 में श्रोतावाजी के दिन निधन हुआ सुभाष मुखोपाध्याय का। भारत के बांग्ला कवि और साहित्यकारों में से एक हैं ये। भारत के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह, साल 2007 में इनका निधन हुआ। भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप साल 2020 में हमारे बीच नहीं रहे और साल 2021 में आज ही के दिन इस नश्वर संसार को अलविदा कहा हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। तो श्रोताओं, आज की तारीख वाला ये तहखाना हमने खोलकर आज की जानकारी आपके साथ साझा की और शायद यही हर तारीख की खूबसूरती भी है कि वो चुपचाप अपने भीतर कई बातें समेटे रहती है। अब कार्यक्रम सुप्रभात में आगे, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम सुबह सुहानी में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं श्रोताओं, आज

खास दिन मनाया जा रहा है। श्रोताओं, कहते हैं जिंदगी का हर हिसाब आसान नहीं होता, लेकिन अगर गणित साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल समीकरण जो है वो भी हल हो जाते हैं। और आज के दौर में तो मैथ्स यानी हिसाब सिर्फ कॉपी किताब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मोबाइल ऐप से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष की उड़ानों तक हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इसी सोच को सलाम करने के लिए मनाया जाता है आज के दिन मैथ्स 2.0 डे। हर साल 8 जुलाई को ये दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिवस गणित और आधुनिक तकनीक के गहरे रिश्ते को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य लोगों, खासकर युवाओं को ये समझाना है कि गणित केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने का विषय नहीं, बल्कि डेटा साइंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन जैसी नई तकनीकों की मजबूत नींव भी है। ये दिन विद्यार्थियों, शिक्षकों और तकनीकी विशेषज्ञों को गणित को नए नजरिए से देखने और नवाचार के लिए प्रेरित करता है। ये दिन हमें सिखाता है कि बदलती दुनिया में गणित केवल एक विषय नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने वाली भाषा है। जी हाँ श्रोताओं, जरा सोचिए, अगर जीरो ना होता तो शायद गिनती भी अधूरी होती, और इस दुनिया को शून्य यानी जीरो की ताकत से रूबरू करवाया था हमारे भारत ने।

जी हाँ, भारत के रहने वाले हम हैं और इस बात पर हमें बेहद गर्व है। कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। अब बात करते हैं आज की खबरों की। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत जकार्ता को

0: ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी की आपूर्ति करेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों में देश के 500 से ज्यादा अधिक शहरों में भारत टैक्सी की शुरुआत होगी। मध्यपुर में फिर तनाव बढ़ा। अमेरिका ने ईरान से जुड़े ठिकानों के पर कई नए हमले किए, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई और तेज तेल की कीमतों में, ये कच्चे तेल की कीमतों में जो है वो उछाल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न दौरे पर हैं, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता में रक्षा, व्यापार, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बात करें मौसम की तो श्रोताओं, देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 4 राज्यों ने दशकों पुराने नर्मदा परियोजना भुगतान विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये अभी हमारी आज की खबरों में शामिल है। और बात करते हैं हिमाचल के मौसम की। हिमाचल में लगातार बारिश के मद्देनजर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत और बचाव दलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों में दूर रहने की अपील की गई है। जी हाँ श्रोताओं, मानसून का मौसम है, बरसात का ये मौसम है और बारिश तो होना लाजमी है, तो सभी श्रोताओं से अपील है कि ऐसे इलाकों से दूरी बनाए रखें जहाँ पर खतरा संभावित है, और घर से आप निकलते हैं तो पूरे बंदोबस्त के साथ निकलें ताकि बारिश से अपना बचाव कर सकें और हमारे सभी श्रोता स्वस्थ रहें। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी, और ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह। अब दीजिए इजाजत।
1: सुबह सुहानी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:40 हुए हैं। आप सुनिए हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ्याग। कार्यक्रम शुभ्याग की शुरुआत श्रोताओं हम कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है कृष्णलाल सहगल ने।

जी श्रोताओ, ये लोक भजन अभी आपने सुना कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में। और कार्यक्रम में अब अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इसे आवाज़ दी है विनोद गंधर्व ने।

हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और कार्यक्रम में अब अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं करनैल राणा की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8 बजने को है कुछ ही देर में पहले समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
4: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित

0: द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट स्टेरिस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी।

0: कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और

0: और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, इंडिया एंड इंडोनेशिया स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड कॉल फॉर डिसाइसिव एंड कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट दिस मेनेस। Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
3: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on counter-terrorism cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia security dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cyber security, emerging technologies, defense industry, maritime security and space. Both leaders also agreed to explore greater cooperation in the cyber domain through policy dialogue, capacity building and exchange of expertise and best practices. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
2: Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values and a common vision for the future. Describing India as a mother of

0: दोस्तों आज की महफिल उस अदाकारा के नाम जिसकी मुस्कान में अपनापन था, अभिनय में सहजता थी और स्क्रीन पर आते ही माहौल खिल उठता था। जी हाँ, कार्यक्रम गाने सुहाने में आज बात हो रही है अभिनेत्री नीतू सिंह की। 8 जुलाई साल 1958 को जन्मी नीतू सिंह, इनका असली नाम हरमीत कौर था, बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने बेहद छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बाल कलाकार के रूप में उन्हें उस समय बेबी सोनिया के नाम से जाना जाता था। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास बचपन से ही साफ दिखाई देता था।
1: हाँ,
2: क्या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है
2: कह

0: गाने सुहाने ये कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने इसे ट्यून किया है और अगला गीत आपको सुनवाएंगे हम इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच भी करवाई। ये तीनों जाँच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जाँच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जाँच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम गाने सुहाने में सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। श्रोताओं को बता दें, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह पर, जिनका आज जन्मदिवस है। दोस्तों, नीतू सिंह की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उनका अभिनय कभी बनावटी नहीं लगा। उनकी मुस्कान और चंचल अंदाज दर्शकों को अपना सा महसूस होता था। 70 का दशक हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर माना जाता है और उसी दौर में नीतू सिंह ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी जोड़ी कई अभिनेताओं के साथ पसंद की गई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया अभिनेता ऋषि कपूर के साथ। दोनों की फिल्मों में जो सहजता और दोस्ती नजर आती थी, वही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बनी।

फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज का कार्यक्रम गाने सुहाने। जी हाँ श्रोताओं, पर्दे पर जिस जोड़ी को श्रोताओं ने बहुत पसंद किया यानी नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी को, रियल लाइफ की ये जोड़ी रियल लाइफ में भी आगे चलकर सच में जोड़ी बनी। 22 जनवरी साल 1980 को नीतू सिंह ने विवाह किया अभिनेता ऋषि कपूर के साथ। नीतू सिंह ने अपने करियर के सबसे सफल दौर में शादी का ये फैसला लिया। उस समय वे लगातार सफल फिल्में दे रही थी, लेकिन परिवार को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उस दौर में ऐसा फैसला लेना आसान नहीं माना जाता था।

0: गाने सुहाने। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब वक्त एक बार फिर छोटे से ब्रेक का।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम गाने सुहाने में एक बार फिर सभी श्रोताओं का स्वागत। आज श्रोताओं, बात कर रहे हैं हम अभिनेत्री नीतू सिंह की, और कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नीतू सिंह द्वारा अभिनीत फिल्मों से कुछ गीत। दोस्तों, समय बदला, सिनेमा बदला, लेकिन नीतू सिंह के प्रति दर्शकों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। फिल्मी करियर से ब्रेक लेने के बाद कई सालों के बाद वो फिर से अभिनय की दुनिया में वापस आई, और दर्शकों ने उतने ही प्यार के साथ उन्हें स्वीकार किया, और उन्होंने साथ ही ये साबित कर दिया कि सच्चे कलाकार की पहचान समय के साथ और निखरती है। नई पीढ़ी ने भी उन्हें उतना ही अपनाया जितना पुराने दर्शकों ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। 9 बजे हैं, अब लीजिए हाजिर हैं लेकर के हम कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम गीतांजलि सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात श्रोताओं। कार्यक्रम आज आप सुनेंगे अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। मैं हूँ नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम, कम कम सी होंगी बातें, ज़्यादा सा होगा म्यूज़िक और मौज मस्ती। आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे और प्यारे प्यारे से गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे, अपने दोस्तों को सुनवाएंगे। उम्मीद है हमारे सभी श्रोता ठीक ठाक तंदुरुस्त मस्त होंगे और आकाशवाणी धर्मशाला के साथ जुड़े होंगे और सुन रहे होंगे हमारे कार्यक्रम।

यही उम्मीद हमारी भी कि सभी श्रोताओं की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा। कार्यक्रम के गीतांजलि आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इसे आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। श्रोतो, आज का दिन यानी 8 जुलाई का ये दिन बहुत शुभ है, बहुत खास है, और ऐसा भी हो सकता है कि कल का बीता दिन यानी 7 जुलाई का दिन जो है वो भी किसी के लिए बेहद खास रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जो कल का दिन आने वाला है यानी 9 जुलाई का वो भी किसी के लिए बेहद खास हो। तो इस तरह से हर एक दिन किसी न किसी के लिए खास है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हर दिन खास है, हर दिन शुभ है अगर मान ले तो, और अगर हर दिन को हम अच्छे से बिताने का निश्चय कर लें तो हर दिन शुभ है और हमारी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा, शुभ ही शुभ होगा, ये भी पक्का है।

जी हाँ श्रोताओं, किसी की जिंदगी में आज का दिन बेहद शुभ है और हमारी माने तो हर दिन को शुभ मानिए। और श्रोताओं, शुभ दिन की अगर बात करें तो जन्म दिवस से ज्यादा शुभ किसी दिन को नहीं माना जाता। तो आकाशवाणी धर्मशाला की ओर से उन सभी श्रोताओं को जन्म दिवस की शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है।

जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से खुशियाँ मनाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, तो खुशियाँ हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं, उसी तरह गम भी हमारी ज़िंदगी में, टेंशन्स भी हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। लेकिन अपने दिल को टेंशन से फ्री करें, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनाकर रखें, तो मान लीजिए हर दिन किसी छोटे से सेलिब्रेशन से कम नहीं है।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, कभी कभी तो जिंदगी में खुशियां भागती हुई दौड़ती हुई चली आती हैं, लेकिन कभी कभी खुशियां भी उदास हो जाती हैं, तो जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है और खुशियों को अपनी जिंदगी में खुद खींच कर लाना होता है। चलिए हम भी आपकी जिंदगी में एक नया रंग भरते हैं इस गीत के साथ और खुश करने की कोशिश करते हैं आपको थोड़ा और।

0: श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीतांजलि यूं ही जारी रहेगा प्रादेशिक समाचारों के बाद भी, और समाचारों के बाद हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया से ट्रैक्स लेकर आएंगे। अभी हम फिलहाल आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज प्रादेशिक समाचारों के लिए, जहां से 9:20 पर आप उन्हें सुन सकते हैं।
1: अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने पर देश में घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को करेंगे लाहौल स्पीति का दौरा, तैयारियां जोरों पर। प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सों की भर्ती पर रोक हटाने से किया इनकार, कुल्लू घाटी अब पर्यटकों को ब्राउन ट्राउट मछली के नाम पर अपनी ओर करेगी आकर्षित। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, कुल्लू की गड़सा घाटी और निर्मल क्षेत्र में बादल फटे, कोई जानी नुकसान नहीं। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक कमी होने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में निरंतर विस्तार के कारण उपभोक्ताओं के लिए संभावनाएं अनुकूल बनी हुई है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने इस प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलांग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री 10 जुलाई को कुल्लू पहुंचेंगे और अगले दिन लाहौल स्पीति जाएंगे। मंडी से सांसद कंगना रनौत भी उनके इस दौरे में शामिल रहेंगी। नड्डा के इस दौरे को लेकर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला मुख्यालय केलंग में एसडीएम कुनिका एकर्स ने केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों की एक बैठक में समीक्षा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। प्रदेश हाईकोर्ट में बीते रोज आउटसोर्स भर्ती मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से भर्ती पर लगी रोक हटाने या पहले घोषित परिणाम के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह के भीतर आउटसोर्स आधार पर की गई तमाम नियुक्तियों की जानकारी अदालत को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। खंडपीठ ने सरकार की नई नीति पर भी सवाल उठाया और इसे युवाओं से खिलवाड़ व शोषण वाली नीति बताया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए बनाई गई नई नीति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ है बल्कि स्टाफ नर्सों के भविष्य के साथ भी भेदभाव है। किन्नौर जिला के देव समाज टुकपा खुनांग से जुड़े 16 गांवों के देवी देवताओं के कारदारों ने जिला प्रशासन से अवैध रूप से हो रही किन्नर कैलाश यात्रा को बंद करने की मांग की है। इस संबंध में कारदारों की ओर से उपायुक्त अमित कुमार शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया। कारदारों का दावा है कि जिला प्रशासन की रोक के बावजूद अभी भी किन्नर कैलाश यात्रा अवैध तरीके से जारी है। देव समाज का कहना है कि इस मामले को पहले भी 2 बार जिला प्रशासन के समक्ष उठाया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देव समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 10 जुलाई तक जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो देव समाज जन आंदोलन

0: करेगा। चंबा जिला में जनजातीय समुदाय के लिए निर्मित आवासीय परिसरों को अन्य कार्यों में उपयोग किए जाने पर स्थानीय संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। पांगी कल्याण संघ और गद्दी संस्कृति विकास मंच के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में चंबा के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि चंबा शहर में स्थित जनजातीय सराय और बालू स्थित जनजातीय भवन को केवल जनजातीय समुदाय के लोगों के उपयोग के लिए ही प्रयोग करें। इन संगठनों के पदाधिकारियों भगत बड़ोत्रा और शिवदयाल ने कहा कि इन भवनों का अन्य कार्यों के लिए उपयोग होने के चलते जनजातीय लोगों को चंबा में ठहरने में भारी दिक्कतें हो रही हैं।
1: ये जो भवन है, चाहे ये सराय है, ये सब ट्राइबल सब प्लान के पैसे से बने हुए हैं, तो इनका अधिकार और वर्तन जो है वो हमारे पांगी के लोगों को या बरमौर के लोगों को या अन्य जो भी जनजातीय क्षेत्र से आए हुए लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना था। तो आज ये मुलाकात जिलाधीश महोदय को हमने रिटर्न में दिया हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि जल्द हम इसको आप लोगों को सपोर्ट करेंगे।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण दुनिया भर के पर्यटकों में मशहूर कुल्लू जिला अब ब्राउन ट्राउट मछली के नाम पर भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जिले की विभिन्न घाटियों में मत्स्य पालन विभाग ने सफलतापूर्वक ब्राउन ट्राउट मछली के बीज का संचयन किया है। इससे जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं पर्यटक भी मछली आखेट की ओर आकर्षित होंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: कुल्लू जिला में ट्राउट मत्स्य संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मत्स्य विभाग कुल्लू द्वारा ट्राउट मत्स्य बीज का संचयन किया जा रहा है। इसी के तहत परसिमन वैली यानी लगघाटी के समलेरा त्यून कालंग ग्रामक तथा कड़िंचा क्षेत्र में सरवरी नदी में आयातित ब्राउन ट्राउट मत्स्य बीज का सफलतापूर्वक संचयन किया गया। इसके अलावा कसोल मनकन घाटी के छलाल क्षेत्र में पार्वती नदी में भी आयातित ब्राउन ट्राउट मत्स्य बीज का संचयन किया गया। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर का कहना है कि की जलधाराओं में ब्राउन ट्राउट मत्स्य बीज का संचयन न केवल ट्राउट मत्स्य संसाधनों को समृद्ध करेगा बल्कि एंगलिंग, प्रकृति पर्यटन, इको टूरिज्म तथा साहसिक पर्यटन को भी नई गति प्रदान करेगा। इस पहल से परसिमन वैली की पर्यटन संभावनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा स्थानीय युवाओं एवं ग्रामीणों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों व मत्स्य प्रेमियों से अपील की है कि वे मछलियों के अवैध शिकार से दूर रहें तथा मत्स्य संरक्षण गतिविधियों में विभाग का सक्रिय सहयोग करें ताकि प्राकृतिक जल धाराओं में ट्राउट मत्स्य संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि वो कर्मचारियों को एस्मा के नाम पर डराना बंद करें। मानसिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को समय पर उनके हक और सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में कोई 1500 दिहाड़ी वाले चालक नहीं है बल्कि वो 3-3 टेस्ट पास करके चालक बने हैं। कुल्लू जिला में बीती देर शाम बादल फटने की दो घटनाएं हुई। पहली घटना जिला की गड़सा घाटी के शिला नाला में हुई। इसके चलते नाले में जलस्तर बढ़ गया और पैदल चलने वाली एक अस्थायी पुलिया बह गई। दूसरी घटना जिला के निर्मण क्षेत्र के नगेड़ गांव के ऊपर पहाड़ पर हुई। इस घटना में भी नाले में जलस्तर बढ़ गया। दोनों ही घटनाओं में फलों और फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। हालांकि इन घटनाओं में किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। कुल्लू जिला प्रशासन ने जिले में भारी बारिश से नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने को कहा है। जिले में हो रही लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इस बीच प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिलों में सुबह से वर्षा का दौर जारी है जबकि अन्य स्थानों पर मॉनसून के घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय बना रहेगा। लाहौल स्पीति में किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान अब आपदा मित्र प्रशासन के मजबूत सहयोगी बनेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति में आपदा मित्रों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और इन्हें बीते रोज आपदा मित्र किट भी वितरित कर दी गई। इस मौके पर उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि आपदा मित्रों को

0: मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के दौरान ये युवा आपदा मित्र जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्यों में सहयोग करेंगे। उन्होंने युवाओं से समाज सेवा और आपदा के समय सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी, हाईकोर्ट का असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को फिलहाल तैनाती देने से इनकार, नई उद्योग नीति का ड्राफ्ट तैयार शीर्षक से। दैनिक भास्कर लिखता है, उद्योगों को 15 दिन में मिलेगी मंजूरी, ग्रीन इंडस्ट्री और रोजगार पर रहेगा बड़ा फोकस। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित होंगे और कार्यालय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने पर देश में घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को करेंगे लाहौल स्पीति का दौरा, तैयारियां जोरों पर। प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सों की भर्ती पर रोक हटाने से किया इनकार। कुल्लू घाटी अब पर्यटकों को ब्राउन ट्राउट मछली के नाम पर अपनी ओर करेगी आकर्षित। और प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय, कुल्लू की गड़सा घाटी और निर्मल क्षेत्र में बादल फटे, कोई जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। कार्यक्रम गीतांजलि में एक बार सभी श्रोताओं का फिर स्वागत। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशियों का इंतजार करते रहते हैं और हमेशा उनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी सी उदासी छाई रहती है, लेकिन कभी उनकी फोटो खींचना चाहें तो वो एक पल के लिए मुस्कुरा देते हैं और उसी मुस्कान के साथ फोटो बहुत सुंदर आती हैं। तो मान लीजिए जिंदगी एक फोटो की तरह है और हर समय आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहिए और देखिए जिंदगी धीरे धीरे बेहतर और बेहतर बनती जाएगी। और इसमें साथ अगर मिल जाए दोस्तों का तो क्या ही कहने।

जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें यारों का बुलावा आता है। और यार जिंदगी के सबसे अनमोल एक उपहार होते हैं। और यार कभी भी बुलाएं तो चले जाइए बिना सोचे समझे। और हम अगर प्यारे प्यारे से गीत सुनाएं तो उन्हें भी जरूर सुनिए। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए।

0: दोस्तों कार्यक्रम गीतांजलि में अब वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित

0: होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
0: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
0: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोतो, हर दिन खास है ये जान लीजिए और हर नए दिन की बात मान लीजिए। जो भी कीजिए पूरे दिल से कीजिए, क्योंकि अधूरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अधूरे सपने रह जाएं वो भी अच्छे नहीं लगते, अधूरी मुस्कान भी अच्छी नहीं लगती, और अगर जश्न अधूरा हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता।

दोस्तों, खुशी का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं। हम जहां उसे ढूंढ लें, जहां से खोज निकालें, वहीं से खुशी मिल जाती है। और संगीत खुशी हासिल करने का सबसे बढ़िया जरिया है।

म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से। दोस्तों, कई बार गाने के लिरिक्स हम सुनते नहीं, बस धुन इतनी मस्त होती है कि पांव खुद ब खुद थिरकने लगते हैं।

जी, आप कभी अगर हमसे दूर होने को मन नहीं कर रहा है तो यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुनते रहिए फिल्म संगीत और कार्यक्रम है गीतांजलि। अगला गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि इसका आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश

दोस्तों, अक्सर आपने अपने घर के बड़ों को बात करते हुए सुना होगा, तो एक बात सुनी होगी कि जिसे ना पूछो वही सुखी है। जी हाँ, इस बात का मतलब है कि अक्सर मुस्कुराते हुए चेहरे ज़रूरी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और अपने गमों का जो है वो नुमाइश ना लगाइए, क्योंकि आपके चेहरे पर खुशी देख कर ये भी हो सकता है कि अटेंशन आए और धोखा खा जाए कि ये इंसान तो बहुत खुश लग रहा है।

शायद इसके पास मुझे नहीं जाना है, तो अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से जियो, खुल के जियो, खुशी के साथ जियो कि जिंदगी जीने का मजा आ जाए। और इसी के साथ अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम को आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न करने की इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और ये कार्यक्रम आपने सुना तकनीकी सहयोगी अंकित धीमान के साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए और सुबह के 10 बज चुके हैं और स्टूडियोज में हाजिर हो चुकी हैं ज्योति कार्यक्रम गीतों का कारवां लेकर। तो सुनिए ज्योति के साथ ये कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीतों का कारवां लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त ज्योति। आज एक ऐसी महफिल लेकर उपस्थित हैं जहां सुर भी है, ताल भी है और नए जमाने की बेहतरीन धुन भी है। तो हो जाइए तैयार आज के संगीतमय इस सफर के लिए।

में ये गीत आपने सुना शादी में जरूर आना फिल्म से, गीत व संगीत आरको मुखर्जी का। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सावरिया फिल्म से ये खूबसूरत गीत। शान की आवाज है, समीर के बोल, मोंटी शर्मा ने धुन तैयार की है।

आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। अब कार्यक्रम में सुनते हैं प्रसून जोशी का लिखा गीत फिल्म डेली सिक्स से, ए आर रहमान का संगीत निर्देशन है, आवाज का जादू बिखेरा है, रेखा

0: भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और सुजाता मजूमदार ने।
1: आकर
2: ओह शिट,

शान और साधना सरगम की मदहोश आवाज में ये गीत आपने सुना हंगामा फिल्म से। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। कार्यक्रम गीतों का कारवां इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं सुल्तान फिल्म से ये अगला गीत। राहत फतेह अली खान की आवाज है, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर ने धुन तैयार की है,

टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म से ये गीत आपने सुना सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाज में सिद्धार्थ गरिमा के बोल 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गीतों का कारवां का अगला नगमा अब आपके रेडियो सेट्स तक पहुंचा रहे हैं। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं रवि दास की आवाज में ये लोकगीत।

0: धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
4: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
5: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
4: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: आइए अब सुनते हैं निम्मो चौधरी को इस अगले लोकगीत में।

साथियों की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। अब आपको सुनवा रहे हैं नसीम बाला की आवाज में ये अगला लोकगीत।

इसी के साथ कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में आज बस इतना ही, अनुमति दीजिए। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाए।

0: प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

0: राजीव बिंदल ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस या उनके किसी नेता से किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी के जवाब में बिंदल ने कहा कि वो पिछले 35 वर्षों से प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र प्रदेश की जनता का विश्वास है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकाय में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को नकार दिया है, जिससे कांग्रेस के नेता हताशा में हैं।
1: माननीय श्री विक्रमादित्य जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता की कृपा से मैं 35 साल से लगातार जनप्रतिनिधि के नाते समाज में हूं। इसलिए आपसे किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं है और हिमाचल की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को और आपको पंचायती राज, नगर निकाय और कॉरपोरेशन के चुनाव में धूल चटाई है, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप इधर उधर निकाल के गुजारा नहीं कर सकते।
0: प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। प्रदेश हाईकोर्ट में बीते रोज आउटसोर्स भर्ती मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से भर्ती पर लगी रोक हटाने या पहले घोषित परिणाम के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह के भीतर आउटसोर्स आधार पर की गई तमाम नियुक्तियों की जानकारी अदालत को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। खंडपीठ ने सरकार की नई नीति पर भी सवाल उठाया और इसे युवाओं से खिलवाड़ व शोषण वाली नीति बताया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए बनाई गई नई नीति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ है बल्कि स्टाफ नर्सों के भविष्य के साथ भी भेदभाव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने इस प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलांग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री 10 जुलाई को कुल्लू पहुंचेंगे और अगले दिन लाहौल स्पीति जाएंगे। मंडी से सांसद कंगना रनौत भी उनके इस दौरे में शामिल रहेंगी। नड्डा के इस दौरे को लेकर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि कर्मचारियों को एस्मा के नाम पर डराना बंद करें। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को समय पर उनके हक और सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में कोई भी 1500 दिहाड़ी वाले चालक नहीं है बल्कि 3-3 टेस्ट पास करके चालक बने हैं। चंबा जिला में जनजातीय समुदाय के लिए निर्मित आवासीय परिसरों को अन्य कार्यों में उपयोग किए जाने पर स्थानीय संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। पांगी कल्याण संघ और गद्दी संस्कृति विकास मंच के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में चंबा के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि चंबा शहर में स्थित जनजातीय सराय और बालू स्थित जनजातीय भवन को केवल जनजातीय समुदाय के लोगों के उपयोग के लिए ही प्रयोग करें। इन संगठनों के पदाधिकारियों भगत बड़ोत्रा और शिवदयाल ने कहा कि इन भवनों का अन्य कार्यों के लिए उपयोग होने के चलते जनजातीय लोगों को चंबा में ठहरने में भारी दिक्कतें हो रही हैं।
2: ये जो भवन है, चाहे ये सराय है, ये सब ट्राइबल सब प्लान के पैसे से बने हुए हैं, तो इनका अधिकार और वर्तन जो है वो हमारे पांगी के लोगों को या बरमौर के लोगों को या अन्य जो भी जनजातीय क्षेत्र से आए हुए लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना था। तो आज की ये मुलाकात जिलाधीश महोदय को हमने रिटर्न में दिया हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि जल्द हम इसको आप लोगों को सपोर्ट करेंगे।
0: प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और चंबा जिलों में सुबह से वर्षा का दौर जारी है, जबकि अन्य स्थानों पर मॉनसून के घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी

के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कव्वालियां। पेशे खिदमत है कार्यक्रम की पहली कव्वाली, जिसे हमने लिया है फिल्म चंबल का डाकू से। मोहम्मद रफी, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें हैं।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय हमारे श्रोता लुत्फ उठा रहे हैं कव्वालियों का। पेश है कार्यक्रम की अगली कव्वाली, अधिकार फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं, संगीत निर्देशन आर डी वर्मन का।

0: आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं कव्वालियों का कार्यक्रम में। अब रुकते हैं और लेते हैं ये कमर्शियल ब्रेक।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम की अगली पेशकश मन्ना डे की आवाज में जंजीर फिल्म से ये कवाली। कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन है, गुलशन बावरा के बोल हैं।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

कार्यक्रम की आखिरी कव्वाली आप सुन रहे हैं दिल ही तो है। इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को इजाजत। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप

सुन रहे थे कव्वालियाँ। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं।

0: लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो। अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।

0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की

0: फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
1: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
2: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
0: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
1: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
2: कैसे चित्र?
1: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
0: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
1: क्यों नहीं, अभी चलिए।
0: चलिए।
1: आइए।
0: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
2: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
0: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
2: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
0: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
1: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
0: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
0: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
0: अच्छा अच्छा।
1: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
2: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
1: जी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
2: वाकई कमाल है।
1: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
0: सचमुच?
2: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
0: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
1: लीजिए, ये आपका हुआ।
0: इसकी कीमत?
1: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
0: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

नमस्कार वीर जवानों, सादर जय हिंद। आकाशवाणी के आपके अपने कार्यक्रम सैनिकों के लिए मैं आपकी रेडियो साथी

ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। हम जानते हैं सैनिक साथियों कि आप घर से दूर मीलों दूर बर्फीली चोटियों या तपते रेगिस्तानों में तैनात हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में रेडियो की तरंगों के जरिए हम आपके घर आंगन की खुशबू, माँ की ममता, पत्नी का प्यार और बच्चों की किलकारियाँ आप तक लेकर आए हैं। आइए इस संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

सैनिक साथियों कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेश फिल्म से। चित्रा और शंकर महादेवन की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत निर्देशन।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ,

0: ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं सनम फिल्म से ये अगला गीत। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर ने इस गीत को लिखा है। संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का है।

0: तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सैनिक साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत अब शामिल कर रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इस फिल्म से। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजें हैं, रानी मलिक लिखित ये गीत है और संगीत अनु मलिक का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सखी सहेलियां सुनेंगी अपना कार्यक्रम। सुनो सखी।

नमस्कार सखी सहेलियों, कार्यक्रम सुनो सखी में आपकी रेडियो सखी ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और आज के इस अंक में हम लेकर आते हैं फैशन गलियारा। सखी, जुलाई का ये खूबसूरत महीना अपने साथ सावन की सौगात लेकर आता है। सूखी धरती पर जब बारिश की पहली बूंदें पड़ती हैं तो मिट्टी की वह सौंधी सी खुशबू सीधे हमारे दिल को छू जाती है। हर तरफ फैली ये हरियाली, पेड़ों पर झूलते झूले और कोयल की कूक, यही तो है सावन का असली रंग। इस मौसम में जब प्रकृति खुद नए पौधे उगाने के लिए तैयार बैठी है, तो क्यों ना हम भी इस बरसात में अपने घर आंगन में, बालकनी में या आसपास पार्क में, सार्वजनिक स्थलों पर एक छोटा सा पौधा ज़रूर लगाएं। इस रिमझिम बारिश में भी बहुत जल्दी मुस्कुराने लगेगा। तो फिर सखियों, आइए सावन में सजने सवरने के साथ साथ अपनी धरती माँ को भी पेड़ों के गहनों से हम सजाएं। और सखियों, बुधवार का ये दिन होता है जिसमें हम फैशन गलियारा पर बातचीत आपसे करते हैं। आज इस मौसम में, यानी रिमझिम बारिश के इस मौसम में, हमारा पहनावा कैसा हो, इस पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सखियों, ये मौसम जितना सुहावना होता है हमारे कपड़ों और स्टाइल के लिए, उतनी ही नई चुनौतियां भी तो लाता है। क्या कहती हैं आप, ऐसा है ना? बारिश के मौसम में सखियों, कपड़े ऐसे होने चाहिए जो भीगने पर जल्दी सूख जाएं, आरामदायक हो और स्टाइलिश भी उसमें हम दिखें। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, फैब्रिक यानी कपड़े का सही चुनाव। इस मौसम में सखियों, सूती कपड़े पहनने से थोड़ा सा परहेज रखें, क्योंकि भीगने के बाद ये बहुत भारी हो जाते हैं और जल्दी सूखते भी नहीं हैं। इसकी बजाय आप जॉर्जेट, शिफॉन, क्रेप या फिर रेयॉन, लिनन जैसे कपड़ों का चुनाव कर सकती हैं। ये कपड़े हल्के होते हैं, हवादार होते हैं, भीगने पर जल्दी सूख भी जाते हैं और शरीर से चिपकते भी नहीं हैं। इसलिए इस मौसम में हल्के कपड़े सही विकल्प रहता है। और अक्सर सखियों, बारिश में पानी या कीचड़ के छींटे पड़ने से कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके लिए रंगों का जो चुनाव है ना, वह भी बहुत समझदारी से हमें करना चाहिए। गहरे रंगों वाले कपड़े इस मौसम में हमें चुनने चाहिए। अगर बारिश के छींटे उस पर पड़ भी जाएं तो ज़्यादा दाग धब्बे उसमें नज़र नहीं आते हैं। और वैसे भी सखियों, खिले खिले रंग इस मौसम की जान है। लेकिन सखियों, एक समस्या और भी आती है कि ऑफिस आते जाते या बाहर निकलते समय कपड़ों की जो लंबाई है उसका क्या करें। तो बारिश में लंबी मैक्सी ड्रेसेस, भारी लहंगे या ज़मीन को छूती हुई साड़ियों से भी बचना चाहिए। अगर साड़ी पहननी ही है तो फिर सिंथेटिक या शिफॉन की साड़ी आप इस मौसम में पहनें, क्योंकि अगर ये भीग भी जाएगी तो उसे आप संभाल पाएंगी आसानी से। और सखियों, आजकल तो वैसे भी बहुत से कुर्ते और सूट्स का चलन है जो बहुत पसंद आ रहा है आजकल। और यदि आप कॉलेज जाती हैं या ऑफिस जाती हैं तो घुटनों तक की कुर्तियां या फिर शॉर्ट कुर्ते इस मौसम के लिए बहुत सही रहेंगे। इन्हें प्लाजो या फिर पैंट्स के साथ हम पहन सकती हैं। फैशन गलियारा में आज आपसे बात हो रही है बरसात के मौसम में कैसा हो हमारा पहनावा, इस विषय पर। मिलते हैं सखियों कार्यक्रम में इस गीत के बाद और करेंगे और बहुत सी बातें आपके साथ।

0: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।

0: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाइफा है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
0: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
0: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुना सखी, अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं फैशन गलियारा की, और जिसमें बात हो रही है हमारे पहनावे की। और सखियों, पहनावे के साथ साथ इस मौसम में सबसे ज़्यादा डर किस बात का रहता है? वह रहता है चप्पल और जूते खराब होने का। इसलिए इस मौसम में चमड़े के या फिर कपड़े के जूते बिल्कुल नहीं पहनने हैं, वो पानी में बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इस मौसम में रबर या प्लास्टिक वाली चप्पलें या सैंडल पहने, बस ध्यान रहे कि उनकी पकड़ अच्छी हो ताकि पैर आपका फिसले नहीं। ये मौसम सखियों पहनावे के साथ साथ हमारे चेहरे और सजने संवरने के तरीके को भी बदल देता है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बात करते हैं कि पहनावे के साथ साथ इस मौसम में कैसा हो हमारा मेकअप। इस पर इस मौसम में सखियों लेस इज मोर का मंत्र अपनाएं, यानी जितना कम और हल्का मेकअप होगा आप उतनी ही खिली खिली नजर आएंगी। बारिश की उमस से पसीना बहुत आता है, इसलिए भारी फाउंडेशन की जगह अच्छी कंपनी का कोई मॉइस्चराइजर या फिर BB क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इससे त्वचा भी आपकी ग्लो करेगी और त्वचा सांस भी ले सकेगी। आगे सखियों बात करते हैं आँखों की। बारिश में काजल का फैलना तो जैसे एक सबसे बड़ी समस्या होती है, तो सखियों अपनी खूबसूरत आँखों को बारिश के पानी से बचाने के लिए वाटरप्रूफ मस्कारा और वाटरप्रूफ काजल का ही चुनाव हमने करना है। अगर आप आई शेडो लगाना चाहती हैं तो पाउडर की जगह क्रीम बेस्ड आई शेडो का इस्तेमाल करें, जो नमी में टिका रहें। और सखियों बरसात के दिनों में हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे चेहरे पर बहुत तेल और पसीना आता है ना? ऐसी समस्या इन दिनों आप भी जो हैं वो फेस कर रही होंगी। इसका सबसे आसान इलाज आपके घर के फ्रिज में ही है। जी हाँ, मेकअप शुरू करने से ठीक 10 मिनट पहले एक साफ सूती कपड़े में बर्फ़ का टुकड़ा आपने लपेट लेना है अच्छे से, और उसे अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से आपने रगड़ना है। इससे चेहरे के रोम छिद्र, जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, वे सिकुड़ जाते हैं, पसीना इससे बहुत कम आता है और आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। और मानसून में सखियों आपके गाल यदि चिपचिपे हो जाते हैं, तो चमकते हुए गालों के लिए पाउडर ब्लश का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये अतिरिक्त तेल को सोखने में बहुत मदद करता है। होंठों की बात करें सखियों, तो इस सुहावने मौसम में गहरे रंग की लिपस्टिक की जगह आप हल्के रंग की लिपस्टिक का चुनाव कर सकती हैं और खुद को निखार सकती हैं। तो सखियों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप मानसून की पार्टी का या ऑफिस में हमेशा तरोताज़ा और सुंदर नजर आएंगी। घर पर भी आप खुद को सुंदर बना कर रखिए, बारिश के मौसम का आनंद लीजिए। और हाँ, अपने साथ एक बढ़िया रंग बिरंगा छाता या रेनकोट ज़रूर रखें। भारी भरकम गहने इस मौसम में पहनने से बचें, हल्के कपड़ों का चुनाव करें, खुल कर मुस्कुराएं और इस मौसम का मज़ा लें। और साथ ही कार्यक्रम के इस अगले तराने का भी

इस प्यारे से गीत को गुनगुनाते हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिर में। जी हाँ जखियो, जहां आपसे हम बात करते हैं सेहत और स्वाद की और ले चलते हैं आपको खान पान की इस अनोखी दुनिया में, जहां बनता है बहुत कुछ खास, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी नमकीन तो कभी लजीज। सखियो, हम महिलाओं के मन में हमेशा एक सवाल रोज़ घूमता है, आज नाश्ते में क्या बनाएं, दोपहर के भोजन में क्या बनेगा और रात को क्या बनाया जाए, है ना सखियो? तो सखियो चलिए, सुबह के नाश्ते में ऐसा क्या बनाएं कि जो घर वालों को भी पसंद आए, उनकी सेहत के लिए भी वरदान हो और स्वाद में भी बेमिसाल हो। तो आज इस मुश्किल को करते हैं हम थोड़ा सा आसान। आज आपको हम बताएंगे अंकुरित अनाज से बना सलाद, जी हाँ, जिसमें प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है और फाइबर तो भरपूर मात्रा में इसमें होता ही है। ये सलाद हमारे पाचन को दुरुस्त रखता है, त्वचा पर चमक लाता है और दिन भर शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। इसका सेवन करके घर के बड़े हों या बच्चे, सभी दिन भर ताजगी महसूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सामग्री आपको बता देते हैं, जल्दी से नोट आप कर लीजिए। सबसे पहले सखियो, अंकुरित मूंग दाल और चना एक कटोरी हमने लेना है। इन्हें आप हल्का सा उबाल भी सकती हैं या कच्चे भी ले सकती हैं, जैसा आपको पसंद हो। प्याज, टमाटर और खीरा एक एक मात्रा में इन्हें लेना है और बिल्कुल बारीक हमने इन्हें काट कर रखना है। हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक भी लेंगे स्वादानुसार। भुना जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच और नींबू का रस एक बड़ा चम्मच, ताकि इस सलाद को चटपटा बनाया जा सके। अब इसे बनाने का तरीका आपको बताते हैं, जान लें आप ये तरीका। सबसे पहले सखियो, एक बड़ा बर्तन लीजिए, कोई कटोरा बाउल लीजिए, उसमें अंकुरित मूंग और चने को सबसे पहले आपने डाल देना है। अब इसमें कटे प्याज, टमाटर और खीरे को आपने मिलाना है। अब इसमें हरी मिर्च, यदि बच्चों के लिए बना रही हैं तो फिर हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। साथ ही डालिए धनिया पत्ती, सादा नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और चम्मच से अच्छी तरह से इन्हें मिला लीजिए। और आखिर में इसमें हम निचोड़ेंगे नींबू का रस, जो इसके स्वाद को दोगुना कर देता है और कर देगा सखियो। लीजिए, तैयार है सेहतमंद अंकुरित अनाज का सलाद, जो आपको दिन भर ताजगी से भरे रखेगा। और सखियों के मनोरंजन का ध्यान भी हम रखेंगे पेट पूजा के साथ। तो चलिए सखियो, सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

आज के कार्यक्रम सुनो सखी में बुधवार के इस विशेष अंक में सखियो हमने आपसे बात की बरसात के इस मौसम में पहनावे की और कैसे आप सजे सवरे मेकअप आपका कैसा हो इस विषय पर। और हाँ, सुंदरता को कायम रखने के लिए खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें वास्तविक सौंदर्य देता है। तो इस कार्यक्रम में आज अंकुरित अनाज का सलाद, इससे जुड़ी रेसिपी भी आपके साथ साझा की। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सखियों को पसंद आया होगा। इसी के साथ लेते हैं आपसे अनुमति, चलते चलते आपको बताते चलें कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया रेडियो सखी ज्योति के साथ। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विपिन कुमार का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। नमस्कार। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें

0: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाज रोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev, whose blessings, he said, have always guided him. Referring to the redevelopment of the Kedarnath Temple and the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, the Prime Minister said he had the privilege of contributing to these projects. He added that his visit to the Prambanan Temple had also given him the opportunity to initiate renovation efforts, describing it as a matter of great fortune.
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: The Prime Minister has since departed for Australia. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a 3-day visit, where he will participate in the third

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है, बहुत सारी बातें इसमें हुई थी। लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है। बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे। गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियाँ बाँटता था, गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे। क्या बढ़िया बात है ना, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिल एक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठकर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गांव में और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं, इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गाँव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा, अंतर्देशीय मिला, उसे संभाल कर रखे हैं, इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है और इसने रोज़ी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत हैं और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं और उन्हें विनोद खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है। क्या बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे

उन्हें बहुत सारे बहुत प्यार से उत्तर देखे हैं, और हमारी श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिल उठने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी मैं भी बड़े सलीके से सहेजे हैं, कभी सफ़ेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुरों की महफिल सजाते गायक गायिका, स्वाद बिखेरता हुआ बर्ची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू हमारे फिल्म के पर्दे पर ले आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके गीतकार बता दीजिए, और फिर वही पहचानना है कि किरदार और अभिनेता दोनों का नाम बता दीजिए, ये किरदार कौन सा है और उस किरदार को कौन से अभिनेता ने निभाया है। बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको बताना है इसके गीतकार का नाम भी।

तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये गीत हम सुन रहे थे उस फिल्म से जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। और जब हम आपसे पूछें तो आप गलत कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि बावर्ची फिल्म से है, और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कैफी आसमी, बिल्कुल सही उत्तर है। और हम बता दें कि इसे गाया है मन्ना डे ने। बड़ा खूबसूरत सा गीत है ये, और इस गीत के लिए सभी ने बड़े अच्छे से पसंद भी किया, प्यार भी किया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने ये बावर्ची का गाना है और इसे टीवी पर देखा है, इन्हें याद नहीं है। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, पहले घर पर तार का बना हुआ एक हैंगर हुआ करता था, जिसमें पिताजी आने वाले हर पत्र को बहुत सलीके से फंसा कर रख देते थे। आज तो पिताजी है नहीं, और समय के साथ हैंगर भी गायब हो गया है जी। हमारे घर पर भी यही होता था, सभी के घर पर ये चीज़ होती थी उस समय। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बावर्ची का रोल निभाया, एक संयुक्त परिवार के मन मुटाव को दूर करके आपस में सद्भावना और लगाव को लगाने की, फिर से जगाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेरणा देने वाला किरदार है, बिल्कुल सही बात है ये कि इतना सुंदर किरदार उन्होंने जो निभाया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि ये गाना राग हेमंत में है और मन्ना डे की आवाज़ है, बावर्ची फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ, इस फिल्म में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजेश खन्ना की बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाया है। ये फिल्म कितनी बार भी देख लें बुरा नहीं लगता है ना। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा साधारण पोस्ट कार्ड की वर्तमान कीमत 50 पैसे है, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड दशकों पुरानी बात है, और वह बदल गया जी, बिल्कुल बहुत समय बाद बदला। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने फिर से मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे हम पोस्ट कार्ड तक पहुँचने लगे हैं। ये भी तो एक अच्छी बात है ना, हमारे और आपके मिलने का। हमारे श्रोता को डाकू के रोल में धर्मेंद्र और सुनील दत्त इतने बेहतरीन लगते हैं कि वह छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वास्तव में डाकू ऐसे होते होंगे, शायद होते भी होंगे, हम सब ने तो देखा ही नहीं है ना। और भी बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे दूसरे और भी किरदार होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उन किरदारों के बारे में भी, उन किरदारों के नाम भी आप

लिख सकते हैं हमारे साथ में, तो आप ज़रूर लिखिएगा हमारे साथ में। और हमारे एक श्रोता ने एक किरदार के बारे में जिक्र किया है कि बलराज साहनी की स्वाभाविक अभिनय बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने 2 बीघा ज़मीन में रिक्शा वाला की भूमिका निभाई थी। कलकत्ता में उस समय हाथ से खींचने वाला रिक्शा चलता था। हाथ से खींचने वाले रिक्शे वाले का असाधारण अभिनय किए थे बलराज साहनी, और उनका यह किरदार जो है वह उन्हें बहुत अच्छे से याद आता है। अब देखिए जंजीर में इन्हें प्राण, एक श्रोता लिखते हैं, प्राण साहिब ने गुंडे का किरदार निभाया था जिसमें उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में वह देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं कि अभी हम जो इन सभी किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में टारजन का किरदार देखा था और सोचा था ऐसे ही बिंदास उन्मुक्त होना है। आप टारजन होना चाहते थे, बढ़िया बात है। वैसे सही बात है, जंगल में रहो, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। वैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक किरदार है तेल मालिश वाला, सर जो तेरा चक्रा है। हाँ, ये भी जीवंत अभिनय है जॉनी वॉकर का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हम सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते, परंतु हम आप तक अगला गीत ज़रूर पहुँचा सकते हैं, और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे। इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है, और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है। अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है। गायक बता दीजिए और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में 2 डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया, और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, ज़रूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया, और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहाँ पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में

एक दो तीन चार पाँच या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हों। वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसी कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए। एक ही प्रश्न दे रही हूँ इस बार मैं आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद हैं, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद हैं जहाँ पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा ज़रूर।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ही याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मज़ेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों, इज्जत, जॉनी मेरा नाम।

जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूजा राम, तीजा राम का आईएस जौहर ने, अभिनेता आईएस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था और बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानु नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी, माँ पिता, बहन, सारे रोल उन्होंने ही किए थे। जी जुड़वा, बेटों की तेरी भूमिका कई सारे निभाए हैं अमिताभ बच्चन ने, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में। राज, राणा, रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु, दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है, इसके बारे में, आंटी नंबर वन के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमी पर की बात करें तो वहाँ पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती हैं नीरजा 2016 की इस फिल्म में और क्या बढ़िया किरदार निभाती हैं। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीज़ें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की और फिल्म जॉली एलएलबी में अरशद वाशी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट सोलंकी पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना फलसी कक्कर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का और किरदार रामनाथ गुप्ता रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सब से मिलती हैं, ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार है वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। वो किरदार गायक, अभिनेता, कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज़ में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया, और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं, यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारो जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हैं गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप ज़रूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, ज़रूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा खोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी हैं, उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर सा गीत है, ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए। पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती हैं, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं।

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी हर माँ ने कितना प्यार दिया है, और आप सब ने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है, और उन माँओं में से आप सब ने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद हैं, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद हैं, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं। और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी से जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन हैं।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में भौतिक उन्नति से ज्यादा आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति का मुख्य अर्थ अपनी आत्मा को सांसारिक विकारों और अहंकार से मुक्त करना है। ये नियमित ध्यान, आत्म समीक्षा और निष्काम सेवा के अभ्यास से संभव है। सही और सकारात्मक विचारों को अपनाकर ही मन की शुद्धि संभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना आत्मिक उन्नति की पहली शर्त है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही हो। हमारा दृष्टिकोण गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत होंगे और गलत क्रियाकलाप से जो परिणाम सामने आते हैं वे भयंकर दुखदायी होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों की तलाश करें जिन पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई हो। और ये चार आधार हैं साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आधार ऐसे हैं दोस्तों जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। मसलन बीज एक, जमीन दो, खाद तीन और पानी चार। इन चारों को मिलाकर ही किसी पेड़ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये चारों चीजें

बेहद जरूरी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति अहंकार और विकारों को मिटाकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की प्रक्रिया है, यानी ये बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की यात्रा है।

अपने व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्ममंथन बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें खुद का आंकलन करके अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है। जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है। आत्म समीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा बेहद जरूरी है।

सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। हालांकि खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आंतरिक शांति की जरूरत होगी, और जब तक आंतरिक शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन को शांत रखें। मन की सच्ची शांति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट नहीं है तो कोई भी सुख अधूरा लगता है। इसलिए नियमित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांभानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।

0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के

0: नापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है।

0: दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: अपना बना कर देखो।
1: किस बात से हम डरते हैं, आंखें न मिला कर देखो।
0: हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना बना कर

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी के पोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत आज़ाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से पहले हिंदी में समाचारों का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान संभावित ट्रेड डील को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का स्वागत है, लेकिन इनमें हिमाचल के बागवानों और किसानों के हितों की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आयात शुल्क घटाकर पहले ही कम कर दिया गया है, जिसे और नहीं घटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क में कटौती का सीधा असर प्रदेश के सेब उत्पादकों और किसानों पर पड़ सकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसे सभी मामलों पर गंभीर मंथन की जरूरत है।
1: हम चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। यू के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के साथ भी होनी चाहिए, अमेरिका के साथ भी होनी चाहिए, सभी मुल्कों के साथ होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसमें हिमाचल के बागवान, हिमाचल के किसान के जो हित है उनको सुरक्षित रखना, ये हमारा उसमें दायित्व बनता है। चाहे वो स्टोन फ्रूट्स है, चाहे वो कल फ्रूट्स है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हर चीज में जहां से भी इसका इम्पोर्ट होता है या जहां से भी हिमाचल उसको और राज्यों में भेज रहा है, उसमें अगर बाहर से उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के बागवान को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर गहर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है।
0: शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 10 से 12 जुलाई तक सरदार पटेल की दृष्टि एकीकरण, एकात्मता और संघवाद विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वंदे मातरम एक यात्रा शीर्षक से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित शिमला दौरे के दृष्टिगत उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित प्रोटोकॉल व समयबद्ध कार्य योजना अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यम

0: शीलता का उपयोग करना व सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इसके लिए 20 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आज राजधानी शिमला में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर उनके सपुत्र और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान, विधायक हरीश जनार्था सहित कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नाहन शहर के लिए पेयजल आपूर्ति करने वाली गिरी उठाऊ पेयजल योजना की मुख्य लाइन में मरम्मत कार्य के चलते शहर में करीब 10 दिनों तक एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जाएगी। जलशक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि रामाधौन क्षेत्र में भूस्खलन के कारण इस पाइपलाइन को बार बार नुकसान पहुंचता है। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए जलशक्ति विभाग द्वारा मरम्मत कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्य 19 जुलाई के बाद प्रस्तावित है और विभाग ने पानी की आपूर्ति को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। राजीव कुमार ने लोगों से पानी का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करने और पानी का समुचित भंडारण करने की अपील की है।
1: 10 दिन के लिए हमारा ये सिस्टम जो है पेयरवर्क वाला चलेगा, गिरी वाला। ये इस उपलक्ष में है कि मॉनसून में कम से कम डैमेज हो, लोगों से सहयोग की अपेक्षा करेंगे। इस 10 दिन के दौरान हम एक दिन छोड़ के पानी देंगे, लेकिन पानी की मात्रा इतनी दे देंगे कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी कर सके। ये हमारा 19th या 20th से लेकर 10 दिन के लिए होगा।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के चलते अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति सहित कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और चंबा जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। विषय है हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
3: प्रदेश की चरागाहों में पशुओं को घास चरने के लिए लाने वाली नीति में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने ग्रेजिंग पॉलिसी में 56 साल बाद बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है। अब हिमाचल में पशुपालकों को चरागाहों में अपना पशुधन घास चरने के लिए लाने से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। राज्य सरकार का पशुपालन विभाग व वन विभाग मिलकर आने वाले 6 महीने में एक पोर्टल तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1970 में बनी चराई परमिट व्यवस्था अभी तक चल रही थी। राज्य की चरागाहों को कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और उन पर कितना बोझ डाला जा सकता है, इसे लेकर वैज्ञानिक अध्ययन व मूल्यांकन नहीं हुआ है। अब बदलते समय में इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 को अधिसूचित कर दिया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर गजट में प्रकाशित कर दी गई है। नई नीति के तहत प्रदेश में अब प्रवासी चरावाहों को अपनी सारी डिटेल पंजीकृत करवानी होगी। पशुपालन विभाग और वन विभाग मिलकर एक पोर्टल तैयार करेंगे। पंजीकरण के दौरान प्रवासी चरवाहों को अपना नाम, पता, परमिट का विवरण, चरने के लिए लाए गए पशुओं की संख्या आदि का ब्यौरा देना होगा। जिन चरवाहों के पास परमिट नहीं होगा वे अपने पंजीकरण तय नियमों के साथ करवा सकते हैं। अब आने वाले समय में पशुओं की चराई के परमिट वैज्ञानिक आकलन के बाद ही मिलेंगे। ये परमिट स्थानीय जनता के चराई के अधिकार का आकलन करने के बाद वन्य जीवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जारी होंगे। नई नीति में हर फॉरेस्ट डिवीजन में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी DFO चराई के परमिट जारी करेंगे। हर वन मंडल में स्थानीय चरवाहों के साथ प्रवासी चरवाहों, पंचायतों, वन, पशुपालन, कृषि व ऊन महासंघ के प्रतिनिधियों को शामिल कर स्थायी चराई सलाहकार समिति बनाई जाएगी।

0: इसी समिति की सिफारिश पर परमिट जारी किए जाएंगे। जारी किए गए परमिटों की समीक्षा हर 5 साल बाद की जाएगी। यही नहीं, नई नीति के अनुसार परमिट उन्हीं चरवाहों को मिलेगा जो सही मायनों में अपने पशुओं को लेकर चरागाह पर निर्भर हैं। जो पशुपालक लंबे समय से परमिट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनके परमिट समाप्त किए जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे पोर्टल पर पूरा विवरण अपलोड हो जाने के बाद एक रियल टाइम डेटाबेस तैयार होगा। इसमें प्रवासी पशुपालकों की संख्या, पशुओं की संख्या, प्रवासी मार्गों, पशुओं के पड़ाव स्थलों के साथ चरवाहों का डेटाबेस बन जाएगा। इसके अध्ययन से कई लाभ होंगे। इसे केंद्र सरकार के पशुधन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। नई नीति में प्रवासी पशुपालकों के सभी पारंपरिक माइग्रेटरी रूट्स, पड़ाव स्थल, पशुओं के लिए जल स्रोतों का जियो टैग किया जाएगा। इसके अलावा 7 साल से अधिक पुराने प्लांटेशन यानी पौधरोपण वाले क्षेत्रों का मैदानी सत्यापन करने के बाद उन्हें कंट्रोल्ड ग्रेजिंग यानी नियंत्रित चराई के लिए खोला जाएगा। इस प्रकार नई नीति में ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने से चरवाहों व पशुओं की संख्या का वास्तविक रिकॉर्ड तैयार होगा। हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 पशुपालन परंपराओं की रक्षा और पशुधन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चराई नीति 2026 में विज्ञान, वन्य जीवों की आवश्यकताओं और वन वहन क्षमता को ध्यान में रखा गया है। चराई के नए अधिकार नियमित निर्णय के बजाय वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर तय किए जाएंगे। अधिकारी चरागाहों की उपलब्धता और वनों की वहन क्षमता की जांच करेंगे। वे उन वन्य जीव प्रजातियों पर भी विचार करेंगे जो उन्हीं क्षेत्रों पर निर्भर हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों के पारंपरिक चराई अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस नीति के तहत वन क्षेत्रों के लिए संरचित क्षेत्रीय चराई प्रणाली शुरू की गई।
1: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो, लेकिन वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। और उद्घोषक जो खासतौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारे श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियाँ अपनी तारीफों में उलझ गई हैं, है ना। तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज़्यादा अदा करना चाहिए। हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती हैं।
3: बिल्कुल सही बात है। हमने बात को जिस तरीके से कहा, अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है, इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
4: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
3: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है। गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
4: क्या बात, क्या है? बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा। धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है।

0: समाना, क्या बात है, हमारे सभी सखियों और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना?
1: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते, हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज़ें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते, लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नज़रिया है वो भी ख़राब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है, और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना कर दे कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखियां, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा। हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को, उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए, हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो आपके पास हैं, ना कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उसे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है, ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।

0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं। और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है, तो शिकायत किस बात की। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्म और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
0: बिल्कुल बना देती हैं। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास तौर पर जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुला कर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुना गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया
2: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं इसीलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती
0: हैं। बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
2: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
0: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
2: और आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का जो चलन है तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
0: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
2: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होते हैं ना बहुत
0: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
2: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
2: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
0: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
2: तो भाई क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है, वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया
3: उनको। और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा
2: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो। सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी, लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा, तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
3: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
2: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को डांढस बधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे

0: विश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को डांढस बधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देखिए बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसी के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी। क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज़ आँच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसले, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आँच धीमा पर तलने में तेल पियेंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल को धोकर एक घंटा भिगोएं, पानी को निथार कर चावल, दो चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ हैं और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी।

0: जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव गिराव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल।
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ।

0: ललित मन में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्या समझता हूँ, मैं क्या कहूँगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूँ। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहाँ भी संगतियाँ दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारे प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारे प्रसाद द्विवेदी की भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
1: जी,
0: हजारे प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
0: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके, और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात
0: जी,
1: है।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नज़र आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पल्वित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे
0: जी।
1: कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूँ, इसके बराबर कोई नहीं है। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास, तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहाँ जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहाँ

0: यात्रा और कहाँ से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है और वो मुझे वहीं जा करके मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, जी।
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी
0: जी, जी।
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन बानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज़ को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उसे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज़ उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूँगा।

0: इशारा। हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीज़ें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
0: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
1: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
0: जी,
1: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी
0: जी।
1: है। एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
0: कुंदरू की,
1: उसे मैं ले आया बाजार से, और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो, बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं, तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
0: जी,
1: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
0: जी,
1: मध्य क्षमा चकित हरडी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
0: जी।
1: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी, और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहाँ पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
0: जी।
1: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
0: जी।
1: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था, तो वहाँ से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, तीन कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीज़ें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज़्यादा प्रिय है या ललित मत।
0: जी, तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
1: जी,
0: ये हम समझ सकते
1: जी,
0: हैं। जी, तो एक गीत हो जाए पहले।
1: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे पगला
0: कभी भी। क्या बात
1: जी,
0: है फिल्म
1: जी,
0: पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
1: जी,
0: कर
1: जी,
0: पाएंगे।
1: जी जी जी हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा। तुम

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है, तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिरी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो। 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाऊँ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फ़ोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब 95-96 के थे तब तक, उनको साहित्य अकादमी और कई

0: मिल चुके थे, तो सारी तैयारी हमने फोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी, बिल्कुल।
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसकी
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़कर के हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी,
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रेड्डी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं।
0: जी, जी।
1: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिना चलिया रे, इसको सुनना चाहूंगा।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज़्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियाँ, चाहे वह विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने ज़माने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी।
1: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली, और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज़ दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। इतने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा,
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज़ भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं, और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं

0: समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते हैं।
0: जी, हाँ, जी,
1: उसके बाद
0: जी,
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं।
1: जी,
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरे गीत अमर कर दो,
0: ये मुझे बहुत पसंद
1: है।
0: जी इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन जी।

0: पैडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है, वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं, वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम हैं, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूँ और पक्षधर हूँ कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं
0: जी।
1: ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज़ है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते
0: जी। बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक

0: स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियाँ लिखें, स्त्री को आगे ले आएँ, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएँ। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं। और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वह भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: जी, बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ।
1: जी,
0: मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी मंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है। मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ।
1: जी,
0: मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी ज़बरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गज़लें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गज़लों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ, बाकी गीत गज़ल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य या कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीज़ें आएँ। तो सोचता ये हूँ कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत

0: आपसे कह दूं, मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
1: क्या बात,
0: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच श्री नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए।

0: Benchmark domestic equity indices plunged more than 2% today as renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The quarterfinal lineup for the FIFA World Cup has been finalized. France, Morocco, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina, and Switzerland have booked their places in the last eight after winning their round of 16 matches. And with that, we end this news bulletin.
1: FM band 103.4 MHz par हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन गैर फिल्में। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुहाने से इस शाम के सायंकालीन प्रसारण में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस भजन के साथ।

भजन गैर फिल्मी समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना नरेंद्र चंचल व साथियों की आवाज़ों में गाया ये शिव भजन। भजन गैर फिल्मी समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

अनूप चिलोटा की आवाज़ में गाए इसी भजन के साथ हमारा आज का भजन गैर फिल्मी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भजन गैर फिल्मी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच, और इसमें आज रहेगा स्पोर्ट्स वीट्स।

युवा मंच कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं को, सभी हमारे युवा साथियों को बहुत सारा, ढेर सारा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। युवा साथियों, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके फिट एंड फाइन होने की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों आज है बुधवार और युवा मंच कार्यक्रम के बदले हुए स्वरूप में आज के दिन हम, यानी बुधवार के दिन हम बात करते हैं स्पोर्ट्स वीर्स की, जो हर युवा साथियों को अजीज है। इसमें आज हम आपको वीकली स्पोर्ट्स की जानकारी देंगे और साथ ही साथ करवाएंगे आपका मनोरंजन भी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, जानकारी भी और मनोरंजन भी। वैसे युवा साथियों, हमको भी और आपको भी पता ही है कि खेल हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। खेलना जो है युवा साथियों, ये किसी भी उम्र की मोहताज नहीं है। खेल जो है, इसे किसी भी उम्र में खेला जा सकता है। और खेल खेलने से क्या होता है कि हम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि हमें पता है हमारे युवा साथियों को इंतज़ार रहता है सबसे पहले म्यूजिकल ब्रेक का।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवाओं का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज बुधवार है और बात होती है स्पोर्ट्स वीट्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि T20 सीरीज चल रही हैं, तो भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में संघर्ष करती नजर आई। दूसरे मैच में पूरी भारतीय टीम महज 76 रन पर सिमट गई और इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने भारत को T20 सीरीज के दूसरे मैच में 125 रनों से करारी शिकस्त देकर 2-0 की बढ़त बना ली। तो चलिए दोस्तों, फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं अगली जानकारी के साथ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बात हो रही है स्पोर्ट्स बीट्स की। जी हां युवा साथियों, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच हाल ही में संपन्न दूसरे टेस्ट मैच के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें भारतीय टीम टॉप 4 से बाहर हो गई है। फुटबॉल की अगर हम बात करें, यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, तो अर्जेंटीना की जीत की अगर बात करें तो मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया।

युवा साथियों, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही थी फीफा वर्ल्ड कप की, तो अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। लियोनेल मेसी ने अहम समय पर गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई। मेज़बान देशों की विदाई की अगर हम बात करें तो इस विश्व कप के तीनों मेज़बान देश USA, कनाडा और मेक्सिको

युवा साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम क्षणों में। तो टेनिस विंबलडन की अगर हम बात करें तो इसके मुकाबले अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के पैटिन ने मेन डबल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और अब स्टूडियो की जो घड़ी है वो ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही है। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम प्रस्तुति में अगर कोई त्रुटि रही हो तो मैं चाहूँगी कि हमारे युवा साथी और श्रोतागण जो हैं वो क्षमा करेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, तो ऐसे में नदी नालों से दूर रहें और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलने से पहले बता दें कि इस जानकारियों और मनोरंजन से भरे कार्यक्रम युवा मंच के प्रस्तुतकर्ता

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 MHz पर आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमय सांझ। शाम 6:30 पर कार्यक्रम होगा मौजा ग्राइंडिया। इसमें जानकारियों के साथ साथ लोक संगीत भी सुनवाया जाएगा। इसमें आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी। कार्यक्रम खेतीबाड़ी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:10 का। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा किसान कार्यों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग, साथ ही साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस रात्रि 8:00 प्रसारित किया जाएगा। देशगान आप सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे गीतकार असद भोपाली के लिखे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रूपक। 10:30 पर पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत सुनवाए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 व 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। अब एक नज़र आकाशवाणी दिल्ली से रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7:00 व रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारी धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिमला में आज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत घरों को पूरा करने के लिए सरकार 30 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि पात्र लोगों को समय पर इनका लाभ मिल सके। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए शिमला में हिमाचल हाट का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के नंगल खुर्द में आज निजी कंपनी के सहयोग से एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में जल संरक्षण, स्वच्छता, कृषि, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। इससे 6 गांव के 9000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसी वर्ष सितंबर माह में आयोजित करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली में स्थापित बड़े उद्योगों को अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्थानीय क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, कथित भ्रष्टाचार, पंचायत चुनावों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। वे आज धर्मशाला के डाढ़ चामुंडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से निराश है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।
1: हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, शिमला में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या कर दी जाती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को ऐसा बर्बाद कर दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। डेढ़ महीना बीतने के बावजूद भी आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं करा रहे। संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है, जब चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का ऐसा सफाया होगा जो आज से पहले कभी नहीं।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीरता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने मॉनसून सीजन के दौरान संबंधित विभागों को किसी भी आपदा से पटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने HPCL प्रबंधन से बेघर परिवारों को एक मुश्त मुआवजा देने की मांग की है ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने HPCL के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर बेघर परिवारों से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया है।

0: कि हाउसलेस परिवारों को 75% मुआवजा एक मुश्त देने का प्रयास किया जाएगा।
1: हाउसलेस जो परिवार है सबको जो है एक मुश्त में पैसा दे दो ताकि गरीब लोग भी जो है अपना मकान लगा सके। एमडी साहब ने जो है हमें ये आश्वासन दिया है जिन्होंने घर नहीं बनाए हैं उनको 75% जो है एक मुश्त में पैसा दिया जाएगा जो हमारे को 28 लाख मिलना है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरमय सांझ। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने।

सुरमई सांझ कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी पुलिस पब्लिक फिल्म से, और आवाजें थी लता मंगेशकर अमित कुमार की। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे श्रोता जानते भी हैं, कि कार्यक्रमों में जो बदलाव किया गया है उसके चलते हम आपको बता दें कि हम सभी कार्यक्रमों में फेसबुक पेज पर जो हमारे फरमाइश आती है उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमारे फेसबुक पेज पर जो फरमाइश आई है उसे हम कोशिश करेंगे सुरमई सांझ कार्यक्रम में कवर अप करने की। तो पहली फरमाइश जो हमें भेजी है वो है उत्तम सिंह जंघेल, जिन्होंने सुनना चाहा है तीसरी मंजिल फिल्म का यह गीत। तो चलिए, उत्तम सिंह जंघेल की फरमाइश पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत। सुनिए और इंजॉय कीजिए।

अभी आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का यह गीत। आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी की, संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। और फेसबुक पेज पर हमारे इसकी जो फरमाइश भेजी थी वो हैं कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मॉरिस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, इन सब ने इस गीत की फरमाइश की थी। तो इनकी फरमाइश पर हमने इनको सुनवाया तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत। और अगली फरमाइश फेसबुक पेज पर आई है बुलंदशहर, और भेजने वाले हैं उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़। इन्होंने सुनना चाहा है शोर मूवी का गीत। तो चलिए इनकी फरमाइश भी पूरी किए देते हैं। और आपको बता दें कि इस समय कार्यक्रम चल रहा है सुरमय सांझ, और इस सुरीले से सफ़र में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त वर्षा कटोच। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शोर फिल्म से।

0: श्रोताओ, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें फेसबुक पेज पर भेजी थी बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़ और विवेक कुमार गौड़ ने। ये गीत था शोर मूवी से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम सुरमई सांझ में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं और आज हमने कोशिश करी है इस कार्यक्रम में अपने फेसबुक पेज पर जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जितना हमारे पास समय है हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फरमाइश जो है हम पूरी करें। और आज के इस सुरीले सफर में मैं हूँ आपके साथ वर्षा टोश। कार्यक्रम में आगे हम शामिल कर रहे हैं ग्राम वन बघेरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़, योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजनी, रोशनी सारवा, बेबी ख्याति सारवा। इन सब ने सुनना चाहा है गुमराह फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने, संगीत दिया रवि ने और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो

0: देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम सुरमई सांझ में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज हमने कोशिश करी है इस कार्यक्रम में अपने फेसबुक पेज पर जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जितना हमारे पास समय है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फरमाइश जो है हम पूरी करें। और आज के इस सुरीले सफ़र में मैं हूँ आपके साथ वर्षा टोश। कार्यक्रम में आगे हम शामिल कर रहे हैं ग्राम वन बघेरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़, योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजनी, रोशनी सारवा, बेबी ख्याति सारवा। इन सब ने सुनना चाहा है गुमराह फिल्म का ये गीत, जिस

महेंद्र कुमार की आवाज में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम संपन्न करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिनकी फरमाइश इस बार हम पूरी नहीं कर पाए हैं, कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में उसको अवश्य पूरा करेंगे। पर आप जुड़ते रहिए और सुनते रहिए 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमय सांझ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां। इसमें आज आपके साथ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।

0: फिरी ते गप गड़ाका लाना है ना।
1: बिल्कुल। ता गुलाब जी सब ते पहले ते ये दसा कि आजकल तो खेती बाड़ी दे काम कार च क्या लगाया कने अपने लाड़ू सुगाड़ू में क्या क्या काम कार चलाए।
0: जी बिल्कुल पंच जी, बड़ी खली गल तो हाँ पूछी कही कि ग्रां दे विच ता देखा कोई ना कोई काम जड़ा सा ग्रां वासियां लाए ही होंदा है ना।
1: हाँ
0: हने
1: जी
0: आहां ता ठहरे ग्रां च रहने वाले ठेठ है ना,
1: बिल्कुल।
0: ता आहां ता देखा हुण धाने ते बेले होइए ने, कने हुण देखा जड़ा अपना गुजारा हाँ सब्जियां सुब्जियां लाइया, भिंडी होई गई, करेला होई गया, लौकी होई गई, कद्दू होई गए, सब बाई त्यो कने देखा सर ते ने वो आहां मान जड़ा होंदा ना
1: हाँ जी
0: जिसी बोलते कि सहारा
1: हाँ जी
0: सह
1: तन वगैरह
0: भी
1: पाई थी।
0: हाँ तन्ने लाने का बड़ा कम है अजकल का जी। बरखा पौंदी ता ये बेलदार जड़ियाँ सब्जियां ना
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: थल्ले पई आनियाँ कने फिर सब्जी जालू लगती ता ये सड़ी आँदी फिर है ना, ता ये विशेष ध्यान रखना इस वेले बरसाती दा टाइम होंदा कने बरखा आँदी है कने मिट्टी च नमी ज़्यादा रहती है, ता कोई भी ऐसी बेल है ता सह ढही पौंदी, ता इस दे वास्ते हांजो तिसते वास्ते जियां तुहां गलाया तन लाना जड़ा सा बड़ा जरूरी है।
1: बिल्कुल तुम ठीक लाया। हाँ जो जड़े से बेलदार सब्जियां ही जड़ी से सड़न रोग ते बचानी है नी ने कन्ने कन्ने साड़ी जो भी सब्जियां और भी या साड़ी जड़ी फसल है जड़ी की खेत बिच खड़ी है ना जी
0: जी
1: ते सा जो भी जड़ा से हाँ जो पानी है ते बरसात दे मौसम बचाना जरूरी हो जाता। अगर साड़े खेतर जड़े से पानी कुती खड़ुआ करता ना जी तो
0: जी
1: तिस जो निकासी का जड़ा प्रबंध भी हाँ जरूर करना। वैसे तो साड़े किसान भाई अपने खेतर जड़े से निकासी का प्रबंध पहले ही करी दिया होंगे है ना ते
0: बिल्कुल
1: ना चले वगैरह जड़े से ओडे वगैरह कड्ढी ले होंगे पहले बीड़े के कन्ने कन्ने और साइड च ता इसते भी जड़ा से काफ़ी हद तक अहाँ की जी पानी की निकासी है हो जाती है साढ़े खेतर च। और फिर भी अगर खेतों के बिच भी कुती पानी खड़ुआ करता तो इसकी निकासी का प्रबंध अहाँ जरूर कर लिए जिसते कि साड़ी फसल साड़ी जी सब्जियां साड़ी जी बेलदार सब्जियां तिना का अहाँ सड़न रोग से बचाव कर सकी है
0: जी
1: ना।
0: जी बिल्कुल पंच जी, दिखा ये छोटियां छोटियां गल्लां लेकिन हाँ जो ध्यान रखना बड़ा जरूरी रहिंदा है ना। ता कार्यक्रम मौजां कराई दी है कने अज दी गलबात दे विच अहां गल करनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे बारे च है ना।
1: जी जी जी ता इस बारे च अहाँ गल करनी है इस लोकगीत के बाद।
0: जी

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइनी सुनने वाले सारे ही श्रोतियां जो पंच दी तरफा ते राम राम कन्ने आज मेरे कन्ने टियाले पर गुलाब जी तुंजो भी राम राम
1: जी बिल्कुल जितने भी सुनने आए इतना सबनी जो मेरी तरफा ते भी राम राम कन्ने दिखा टियाले पर हां आई बैठे।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी तो किसान साथी, अहाँ ये संदेश सुने और संदेश से पहले जेड़ा से लोक गीत बरसा कटोच और अधी आवाज सुने, कने आशा है कि तुहां आनंद लियाना लोक गीत दा भी, है ना?
4: जी बिल्कुल पंच जी, लोक गीत दा आनंद ता दिखा हाँ देश दे कुणी कुसी भी कोणे दे विच बैकर सुनी लैन ता आनंद जड़ा सा ता हुंदा ही हुंदा है ना
3: जी।
4: कने इस ते बाद पंच जी हुण कार्यक्रम दे विच हां अगे बढ़ना है, कने चलना है गलबात दी तरफ, है ना
3: जी।
4: ता अज दी गलबात है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे बारे च। ता हरे किसाना यो भी पता है, लेकिन फिर भी यहां कोई ना कोई जानकारी कने कोई ना कोई योजना दे बारे थू अपने जड़ा कार्यक्रम है हाड़ा इदे विच हां दस देन, है ना?
3: हां जी।
4: ता ए भारत सरकार दी एक महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है। इस योजना दे अंतर्गत पात्र भूमि स्वामी किसान परिवारां जो प्रति वर्ष जड़ा सै 6,000 दी आर्थिक सहायता 3 दियां किस्तां च जड़ा सै सीधे उन्हां दे बैंक खाते दे विच जड़ा सै उंदी है।
3: जी जी, ता इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी जिहड़ी शुरुआत दे ते इसदी गल करिए ता इसदी शुरुआत जिहड़ी है सै 24 फरवरी 2019 जो देश दे प्रधानमंत्री होरां जिहड़ा सै गोरखपुर यूपी विच जिहड़ा सै इस दी शुरुआत कीती थी। और इस योजना दे तहत जिहड़े सै पात्र किसानां जो जिहड़ा सै 2,000 रुपए की किस्त जिहड़ी है सै उन्हां भेजी थी ऑनलाइन, है ना जी?
4: जी बिल्कुल।
3: और इस वरी इस वेले इस वर्तमान समय की गल करिए तो इत्थों जिहड़ा सै इस वरी दी जिहड़ी 23वीं किस्त दी जिहड़ी थी सै 20 जून 2026 जो जिहड़ा सै जारी कीती कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और इस विच भी जिहड़ा सै 2,000 रुपए जिहड़ा सै प्रति किसान दे हिसाबे ने जिहड़ा किसान खाते विच जिहड़े से राशि दित्ती गई, है ना
4: जी? बिल्कुल। कने इस योजना दा उद्देश्य किसानां जो बी उर्वरक कीटनाशक या फिर होर कोई कृषि कार्य ताई जिहड़ा से आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, कने उन्हां दी आय जो सशक्त बनाना है। योजना दा लाभ जिहड़ा से प्राप्त करने ताई किसान नाल आधार कार्ड कने बैंक खाता कने EKYC जिहड़ा से होना जरूरी है।
3: जी जी।
4: कने पात्र किसान अधिक जानकारी ताएं जड़ा सै इसकी जानकारी ताएं हाड़ी जड़ी आधिकारिक वेबसाइट है PM किसान पोर्टल पर जाई करी भी इस योजना दे बारे च जानी सकदे ने। कने कोई भी पता नहीं लगदा है, कोई भी जानकारी अधूरी है ता तुहां पता करी सकदे ने।
3: जी, ए ता थी जानकारी अहां दे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना दे बारे च। और इस विच जिहड़ा सै अहां दे किसान भाई जिहड़े सै सीधे इस पोर्टल पर जिहड़ा कि तुहां गल कीता कि PM किसान पोर्टल पर जाई के जिहड़ा सै अपने पंजीकरण करवाई के इस योजना दा लाभ जिहड़ा सै जरूर ले सकदे। और फिर भी तुहां जो नहीं पता लगदा तां अहां दे जिहड़े नज़दीकी दे लोक मित्र केंद्र ने उत्थों जाई के भी जिहड़ा सै अपना आधार कार्ड ले जाई के अपना फोटो ID कार्ड ले जाई के और कन्ने ही अपनी जमीना दा पर्चा ले जाई करी इस योजना कन्ने जुड़ी सकदे और आर्थिक सहायता जिहड़ी इसे ले सकदे।
4: जी बिल्कुल पंच जी। कन्ने हुण अहां कार्यक्रम दे विच अगे बढ़ना है, कन्ने चलना है फिरी ते एक स्नेह सुनना पहले, कन्ने फिर इससे पहले सुनना है लोकगीत।
3: जी।
0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी

0: सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
0: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
0: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
0: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
0: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जिदा किसान साथियां हैं कुशल्या और अदी आवाज़ च प्यारा दे लोक गीत सुनिया। कने आशा है कि तुहां इस दा भी आनंद जिहड़ा से जरूर ले आउणा।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: इस दे बाद दिखा हुण बरसाती दियां छुट्टियां भी जिहड़ियां से साढ़े स्कूलों विच पौने वाली ना, और साढ़े बच्चे जिहड़े से बरसात दे मौसम च खूब जिहड़ी मौज है करदे ने छुट्टियां विच भी, है ना।
1: जी बिल्कुल
0: और कई बार से मामे दे घरे चली जाते, नानिए दे घरे चली जाते, है ना, बुआ दे
1: बिल्कुल
0: घरे चली जाते। तो
1: बिल्कुल
0: इस बीच भी जेड़ा से अहां दे माता पिता जो रखना चाहिए कि थोड़ा जिहा बरसात दा मौसम है इस बीच जालू हाँ अपने बच्चे रिश्तेदार है या उठी जगह भेज दें तो थोड़ी दी सावधानी और सुरक्षा दा जेड़ा से
1: ध्यान रखना
0: दायरा
1: चाहिए, है ना।
0: ध्यान सांझो रखना चाहिए।
1: जी
0: इस
1: बिल्कुल
0: बीच खासकर जालू साढ़े बच्चे नदी नाले च कई बारी धुप होंगी तो नदी नाले च जेड़े से
1: बिल्कुल
0: नहाना
1: गर्मी
0: उतरी जाते
1: पौंदी।
0: ना,
1: जी बिल्कुल
0: तो इस बीच भी सांझो जेड़े से अपनी रेख देख बीच ही ये जेड़े काम ने करने ने, क्योंकि जल साढ़े बच्चे कई बार नहाना उतरते नदी या नाले में, तो इस बीच क्या होंगे कि कई बार पानी का जल स्तर बढ़ी जाता या फिर गहरे होने के कारण भी जेड़े से खतरा बने रहता है ना।
1: बिल्कुल पंच जी, बरसाती दा मौसम है, कन्नै दिक्खा कई बारी क्या होंदा कि जिखले इलाके च धुप्प लगी होंदी, वधिया खिड़ी होंदी धुप्प, कन्नै उपर जेहड़ा सा बरखा पई रहंदी ना,
0: हाँ जी
1: तां इस कारण क्या होंदा कि बच्चियां जो तो पता नहीं होंदा, बड्डे हैं तां पता ही होंदा, है ना।
0: जी जी
1: तां बच्चियां जो समझाना चाहिदा है कि जालू पता लगी आंदा है कि उपर बरखा पई होए तां नाले च उतरना ही नहीं है, है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: ये छोटियां छोटियां गल्लां कहें जी, हां तुहां गलाया कि मामे ने जांदे हे बुआ ने जांदे हे, पर अजकल जेहड़ा ऐसा जमाना थोड़ा जेहा ना, हाड़े जमाने तो बड़े जांदे हे ना,
0: हाँ जी
1: है
0: हाँ
1: ना,
0: जी सारी
1: पर
0: छुट्टियां उत्थे कट्टी आंदे हैं।
1: बिल्कुल कने हुण जालू पता लगदा कि भाई परौणे आउणा, तां इक तां जिन्हां दे घरे जाणदे परौणे, तिन्हां जो भी फोन करके दसणा पौंदा कि भाई
0: लगे
1: कुस दिन
0: होना।
1: आउणा है
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी
1: कने दिक्खा जेहड़ा परौणा हुंदा सब भी फोन करदा, कने जिन्हां दे घरे जाणा तिन्हां जो भी खबर देना पौंदी कि भाई यहां लगे हुए होना, है ना।
0: बोलने का मतलब कि अजकल फॉर्मेलिटियां ज्यादा हो गई हैं, कने
1: बिल्कुल
0: इस बीच जेड़ा से आनंद थोड़ा घटी गया है ना।
1: बिल्कुल आनंद घटी गया कर जी। देखा हाड़े पहले पुराने होंगे है ना, तो तिना वाल जड़ा सह इतना नहीं करते जी, तुम गलाया कि फॉर्मेलिटी नहीं करते है ना।
0: जी
1: तो
0: जी
1: परौने आते हे, मजा करते हे, कमाते भी थे, खाते भी थे, खुशी खुशी जड़ा सह बड़ा अच्छा टाइम जड़ा सह बतीत करते थे। लेकिन हूँ जड़ा है सह थोड़ा जहा एक चीज़ा घट जड़े सह हो कारण यही है कि हाँ जो वाल टाइम ही नहीं है ना।
0: बिल्कुल हाँ जिहड़े से अपने अपने कम्मां विच सारे व्यस्त न, और हाँ जो दूजे वास्ते समय जिहड़ा से नहीं है, पर ये गल है कि हाँ जो इस वास्ते भी जिहड़ा से समय निकालना है और हाँ दा आपसी मेल जोड़ जोल जिहड़ा से लगातार बने रहे, इस वास्ते जिहड़ा से हाँ जो इन्हां गल्लां दे ध्यान जिहड़ा से रखना चाहिए ना।
1: बिल्कुल रखना चाहिए, ये छोटियां छोटियां गल्लां ने लेकिन मजा ग्राएं दा इदी विच ही है ना। कने
0: बिल्कुल
1: दूई गल ए कि अजकल दिखा बरसाती दा मौसम है, बाहरे दे बड़े भरी लोग जड़ा सा घूमना हड़े हरे भरे हिमाचल जो जड़ा सा आंदे ने, है
0: जी जी
1: ना। ता एक देव

0: भूमि मन्ने जांदी कने ओ पहाड़ां तकर जड़ी सा सड़कां निकलियां कने बड़े बड़े तीर्थ स्थल जड़े मंदिर हैं सै हाड़े पहाड़ां दे विच ता लोग जड़े सै ते तू पुजदे न कने ते तू पुजी करी जड़ा सै काफ़ी कूड़ा कचरा जड़ा सै ते तू फैलाई दे है ना।
1: जी
0: ता थोड़ा दिया अहाँ भी जड़ा सै सुधरने दी हाँ जो भी कोशिश है कि अहाँ ही आपू इतों के लोकल जड़े लोग हैं सै ऐसे ऐसे काम करगे तो बाहर देता तो नहीं क्या पी हाड़ी है ना
1: जी यानी
0: ता
1: कि कुल मिलाए के जड़े से हाँ जो प्रकृति सुंदरता जो बनाए रखना और साफ सफाई जड़ी से हाँ भी बनानी और उन्हें जो भी जड़े बाहर दे लोग होंगे तिना जी सचेत करना और जागरूक करना है ना।
0: बिल्कुल
1: तो इन्हें ही गल्ला बात करने हाँ फिर चलना लोक जानकार दी तरफ।
0: जी।

गीत श्रोताओ इसी लोक गीत कन्ने हुन साढ़े कार्यक्रम मौजा ग्राएं दे समय इत्थों ही संपन्न होंदा। जाने ते पहले दस दी कि कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुनील कुमार होर दा कने प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह होर। हुण अहां दे टियाले दे सदस्य जो दिया अनुमति। अच्छा।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान

0: शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई बहन कने होर जितने भी श्रोते हैं तेना सबनी जो गुलाबो दी तरफा ते राम राम कने पंच जी तो अंजो भी मेरी तरफा ते राम राम
1: राम राम गुलाबो जी कने कार्यक्रम सुना करदे सारे श्रोते जो एक बारी फ्री ते पंच दी तरफा ते भी राम राम
0: जी बिल्कुल पंच जी देखा हाँ रोज ऐसी ऐसी जो जानकारी कने गलबात पुजाने दी कोशिश करदे जिन्हां ते कि हाड़ा श्रोता जड़ा सा लाभ ले सके है ना
1: बिल्कुल। और अज हाँ गल करनी आधुनिक तरीके कने जड़ी खेती बाड़ी है किस तरह जड़ी है करनी है ना
0: जी बिल्कुल।
1: आधुनिक तरीके कने खेती बाड़ी करने दा यही मकसद होंदा कि हाँ सुविधाजनक अपनी खेती बाड़ी कर सकी और अच्छा उत्पादन जड़ा सा ले सकी और कन्ने ही साढ़े जड़ा लागत है तिस जो हाँ घटाई सकी है ना
0: बिल्कुल जी कि आधुनिक तकनीकी ने कृषि क्षेत्र च नई क्रांति जड़ी है सै लोहा कर दी है।
1: जी
0: आज किसान उन्नत बीज आधुनिक कृषि यंत्र ड्रिप कने जिया फुहारे फुहारा विधि ने सिंचाई मृदा परीक्षण होइया मौसम दी जानकारी मोबाइल ऐप ड्रोन या फिर GPS दियाँ तकनीका दा उपयोग करके जड़ा सै अपने खेतीबाड़ी दे कम्मा जो लाभप्रद जड़ा सै बनाया करदा है कने
1: जी
0: इन्हां तकनीका ने एक तो टाइम घट लगता है कने दूआ जड़ा सै मेहनत जड़ी है सै बड़ा घट लगती है कने उत्पादन भी बढ़ता है कने खेती की लागत जड़ी है सै भी घटती है ना
1: बिल्कुल आधुनिक तकनीक अगर हाँ अपनाते हैं तो उससे साड़ा खेतीबाड़ी का काम कार जड़ा सा आसान हो जाता और हाँ जो फायदा जड़ा सा ज़्यादा मिलता है ना
0: बिल्कुल जिया कि ड्रोन की सहायता से फसलों की निगरानी हुई उर्वरक कने कीटनाशकों का समान रूप से छिड़काव जिया एको जि छिड़काव करना होता हाथ ने मुश्किल हो जाता है ना
1: जी
0: ड्रोन की सहायता ने यह सारे काम जड़े बड़े आसान हुई कने मृदा परीक्षण के आधार पर भी संतुलित मात्रा च जड़ा सा उर्वरक का उपयोग प्रयोग कने मिट्टी की उर्वरकता जड़ी सै बनी रहती है इसने है ना
1: जी जी
0: इस दे सोगी ही मौसम दी सटीक जानकारी मिलने ते किसान टेमे पर बुआई सिंचाई कने कटाई दा निर्णय जड़ा सै ले सकदा है ता
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: सारी जानकारी जड़ी सै आधुनिक तकनीक पर जड़ी सै निर्भर है
1: बिल्कुल। और इस बीच अजकल किसान भाई साढ़े जड़े से नए नए यंत्रां दा उपयोग भी जड़ा से करा करते हैं जियां कि मिनी पावर टिलर है जिड़े कि अहां दे पहाड़ी क्षेत्रां च छोटे छोटे जड़े खेत होंदे ने उत्थू उपयोग च जुताई वास्ते जड़ा से लाया जाता है कन्ने ही पावर वीडर है फसलों के बीच जड़ी खरपतवार घा वगैरह उगता है तिस जो अहां इस कन्ने आसानी कन्ने निकाली सकते हैं ना जी।
0: जी
1: बैटरी नैपसेक स्प्रेयर मतलब बैटरी कन्ने चलने वाले जड़े साढ़े पंप होंगे इस वास्ते अहां अपने कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव वास्ते इसका उपयोग करते हैं कन्ने मिनी रीपर ने गेहूँ कन्ने धान की फसलों की कटाई वास्ते इसका उपयोग करते हैं। मल्चिंग शीट है जिस विच अहां अपनी सब्जियों के खेतरां जिहड़ी से नमी बनाए रखने वास्ते इस शीट का जिहड़ा से उपयोग करते हैं। चारा कट्टने वाली जिहड़ी मशीन होंदी है चाफ कटर जिसी बोलते हैं इस वास्ते इस ते जिहड़ा से अहां पशुआं जो हरा चारा और सूखा चारा जिहड़ा से तिस जो कट्टने का कम जिहड़ा से इस
0: कर
1: विच
0: सकते
1: लैंदे हैं ना
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल
1: और भी कई तरह के इस तरह के अहां विल जिहड़े यंत्र

0: जिदा किसान साथी हाँ संजय दी बेला प्यारा दे लोक भजन जेड़ा से कश्मीरी राम और महेंद्रू राम और आदि आवाज़ च सुने कने आशा करनी कि जरूर साढ़े इतों का टियाले का लोग जेड़ा संगीत है तिसदा आनंद तो हाँ लिया होना
1: जी बिल्कुल
0: और इसके बाद हाँ फिरी ते जेड़ा सा जानकारी ती तरफ चलना और जानकारी च अहाँ भेंट वार्ता लेके आए न उन्नत महिला किसान की जिड़ी कि मीरा देवी ने तो आवा सुनते ने भेंट वार्ता।
1: जी
2: किसान साथियों आज दे अपने इस कार्यक्रम च टियाले च अहां ने जुड़ी हो न अहां दे उन्नत किसान है ना ता उन्हां ते पुछदे न उन्हां दा नां कने ग्रां कने सै कैदी खेतीबाड़ी करदे है ना ता ओवा पुछदे न उन्हां ते जी तुहाडा नां क्या कने कुण दे ग्रां पौंदा तुहाडा।
1: मेरा नाम मीरा देवी है। मैं मंडेड़ दी रहने वाली है, गांव मंडेड़।
2: हां जी ता तुहां किदी किदी खेतीबाड़ी करदे कने जमीन कितनी है तुहां वाल। हां
1: मेरे वाल जमीन 1 हेक्टेयर है।
2: जी
1: इस बीच मैं फुला दी खेती भी करा दी, सब्जियां भी उगांदी कने गेहूं वगैरह भी लगांदी।
2: अच्छा तो तुहां इहदा बीज जड़ा से कुत्थों ते लैंदे।
1: बीज हाँ कृषि विभाग जेड़ा है आहां दा बैनाथ तिथु ते लैंदे हाँ।
2: हां जी
1: जी
2: अच्छा तो ये दसा तुहां कि अगर कोई अहां दा जड़ा नवयुक्त किसान है से फुलां दी खेती बाड़ी करना चाहे तो सह कुत्थों ते जड़ा सह इहदा बीज लै कने कियां सह इहदी इस कम्मे दी जिहड़ी सह शुरुआत करे।
1: पहले तो जेड़ा किसान इस कम्मा करना चाहता तिस जो उद्यान विभाग वाली जाना चाहिदा,
2: हां जी
1: तिथु तिन्हें ते मतलब जेड़ी ऐसे ट्रेनिंग दिंदे।
2: हाँ जी
1: ट्रेनिंग लेने ते बाद ही जेड़ा ऐसा ये काम शुरू करना चाहिदा।
2: हाँ जी
1: कने इस दे जेड़े बूटे होंदे सै होंदे बेंगलोर ते।
2: अच्छा
1: हां जी हां जी
2: ता इस कौन कौन किस्म होनी है इस फूलों
1: इस
2: दी।
1: विच फुला दी बड़ी ज्यादा किस्म है ना
2: हाँ जी
1: जी। मैं जेड़ा लगाया फूल सै कार्नेशन है,
2: अच्छा
1: बाकी इस विच गुलाब, गेंदा, ग्लैड, लिलियम,
2: हाँ
1: बाकी
2: जी
1: और बड़ी बारी किस्म है ना बड़ी ज्यादा।
2: जी अच्छा तो
1: जी
2: तुम्हें तो दस्या था पर ये भी होंगे कि कुछ इलाकों के हिसाब से भी फुल होंगे कि ये फुलों की खेती जी
1: नहीं,
2: ऐसा मौसम नहीं रखता कुछ भी प्रभाव इसकी पर। हाँ
1: मौसम फसल लगाने का टाइम है,
2: जी
1: बाकी हर जगह जेड़ा ऐसा जेड़ा मैं फूल लगाया कार्नेशन या कोई भी फूल सा जेड़ा ऐसा हो जाता हर जेड़ा कोई भी वातावरण हो, कदे भी वातावरण च पहाड़ा च भी पहाड़ी इलाके च भी होना मैदानी इलाके च भी होना।
2: अच्छा
1: हाँ
2: ता
1: जी
2: ये दसा तुहां सुनने वाले कि मतलब इससे तुम्हें कितनी क्यों आननी हो जाती।
1: इस विच जी तुम देखा मेरे वाली था पहले 1,000 स्क्वायर मीटर।
2: अच्छा
1: 1,000 स्क्वायर मीटर का मतलब है 2.5 करनाल एरिया।
2: अच्छा
1: ये जेड़ा फूल मैं लगाया ये फूल लगाना हो तो इस ताए पहले तो पोलियोस चाहिए
2: अच्छा
1: ठीक है। इस 2.5 करनाल एरिया के अंदर जेड़ा मेरी पहले साल की जेड़ी आमदनी है शुरू की 9.5 लाख है।
2: अच्छा 9.5 लाख
1: हाँ
2: है।
1: जी
2: हाँ जी
1: इस विच लगभग अगर थोड़ा लेबर ते करवाना है सारा
2: हाँ
1: काम
2: जी
1: का
2: खर्चा खुर्चा
1: पहले
2: कटेगा।
1: साल च जेड़ा कोई लगभग 4.5-5 लाख दे तकरीबन खर्चा हो जाता।
2: अच्छा अच्छा पहले
1: हाँ
2: साले च
1: पहले साले फिर ही मतलब जेड़ा ऐसा इस दी फसल जेड़ी है काफी लंबी टाइम रहती है 3-3.5 साल तक तुम इस दी ढंग ने सेवा कर गए तो जो मतलब 3.5 साल तक तुम इस ते आमदनी ले सकते फिर।
2: अच्छा जी ये तो तुहां गल गलाई आमदनी दी आमदनी तो बिल्कुल बढ़िया हो जांदी खर्चा भी तुहां दसी ता भी 9 लाख रुपया लाया तुहां
1: हाँ
2: पहले
1: जी हाँ
2: साल
1: जी
2: है
1: हाँ
2: तो
1: जी
2: तेज जेड़ा 3-4 लाख।

0: रुपया तुहाड़ा खर्चा हो गया, बाकी मुनाफा है ना।
1: हाँ जी,
0: तो उदे बाद अगले साल तो तुहाड़ा जेड़ा सा खर्चा घटी आंदा होना इतना ज्यादा।
1: अगले साल क्या मतलब लाइफ टाइम, मतलब आगे भी मतलब
0: जालू तक खेती
1: मतलब खेती करना चाहते तो कुछ एक जेड़ी तीस दी चीज मतलब लगाई हुई है ना। हाँ जी, तीस विच स्पोर्टिंग पाइप होंगी जी, तीस जो बेड बनाते कने फिर पाइप है जेड़ी से, तीस जो बेड जो जाला लगता जाले जो खड़ा रखने ताए
0: सह
1: जेड़ी चीजें ने या जाला जेन से हां जो मतलब सह तो हां जो काफी टाइम तक जेड़ा ऐसे हां चीज कमी आ जांदी। फिर जली हां नई फसल लगानी है मन लिया उखाड़ी के, ता फिर क्या होंदा कि हां दी जेड़ी पहले वाला सामान है सह यहां जो जेड़ा ऐसा सह यूज कर लेंदे हां, ता तीसदा खर्च जेड़ा हां जो नहीं पोंदा। फिर हां दा खर्च हुंदा जी बूटे लगाना,
0: हां जी
1: कने मतलब भेजना पैकिंग मटेरियल वगैरह जी पैकिंग करनी पेटी वगैरह च सही खर्च होना हां दा फिर।
0: अच्छा, तो तुहां जेड़ा सह इना फुल्लां बेचने दिक्कत तो नहीं होंदी, कुत्थों बिक जांदे
1: ए फुल दे बिकने या ता दिल्ली
0: अच्छा
1: या फिर चंडीगढ़ जड़े होटल है ना फाइव स्टार थ्री
0: हांजी
1: स्टार तीस ची लगने तुहां दे फुल,
0: हांजी
1: बाकी नजदीक तो इन्हां दा ज्यादा कोई है नी, इन्हां दा खरीदने वाले है नी। बाकी थोड़ा बहुत जिया फुल फाला दी जड़ी गड्डिया सजांदे से थोड़ा बहुत मतलब 50-100 स्टिकर ली आंदे, तीस कने आंदा कुछ हुंदा नी क्योंकि अहां ता बेचना हुंदा ज्यादा मात्रा च, ता सह हां जो फिर उथू दिल्ली जड़ा आई या फिर चंडीगढ़ अमृतसर, लेकिन दिल्ली जड़ी ऐसे बिल्कुल मतलब बढ़िया हां जो रेट भी कने मंडी जड़ी है दिल्ली से बेस्ट है।
0: अच्छा, मतलब कोई किसान इतू करना चाहते थे ना, दिक्कत नहीं होनी बेचने से, मतलब अपू करे आई के लिए आते कि क्या होंगे ऑनलाइन होंगे
1: दिक्कत क्या? कोई नहीं होनी जिस वक्त तू मतलब फुल लगाते तो जेडे जे डीलर होंगे दिल्ली दे बैठे से मतलब थी ना जो क्योंकि तुहां जो पता ही है बिजनेसमैन जेड़ा व्यापारी हुंदा सा बड़ा बड़ा तेज हुंदा, तीस जो सह जेड़ी बी जेड़े बूटे तैयार कर दे कंपनी,
0: हांजी
1: तीसा कंपनी ते ही मतलब सह पूरा मतलब फीडबैक ले लेंदे कि पूरा कि कुण जेड़ा फार्मर है कितने बूटे लगा दा कितनी फसल लगा दा, ते तू ते जेड़ा ऐसा तुहां दा समझ लिया तुहां जो मार्केट दी ता कोई समस्या है ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा,
1: बेचने दी कोई समस्या नहीं है, तुहां जाली फुल तुहाडा तैयार हो जाना, तीस ते पहले जेड़े व्यापारी हुंदे से तुहां दे घरे आई के पूरा मतलब दिखी आंदे कि भाई फुल तैयार है, कने तुहां ने मतलब पूरी डील करी आंदे कि भाई हां अहां तुहां दा फुल लेना है कने बढ़िया रेट देना तुहां जो। ए भी हुंदा कि कई बारी अहां गलत व्यापारी दे हथे भी आ जांदे, कई व्यापारी ऐसे है ना सारे मतलब क्योंकि दिल्ली अहां जो पता नहीं है कि कौन व्यापारी जो ऐसा ईमानदार है कौन कदे है ना।
0: ये तो सच गलाया तो कि मेहनत सख्त किसाने दी होंदी कने जे फसला दा भाव सी ओ नहीं मिल रहा तो फिर मुश्किल हो जाती है ना।
1: तो मतलब ये है जेडे पहले जेडे फार्मर जेडे किसान जुड़े हुए ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: इस कम ने तिना किसाना दी अगर तिना कने जुड़न कने तिना दी सलाह ले लैन तां मेरी समझ च सै भी दिक्कत है जेड़ी ऐसे नहीं होनी।
0: अच्छा अच्छा, एदी कन्ने कन्ने तो हाँ और भी काम करते, डंगर बच्छू भी रखे?
1: हाँ जी हाँ जी, हाँ गाय का काम भी है, एक दो गाय दो गाय जी आपू जो घरे यहाँ रखते ही रखते।
0: अच्छा
1: हाँ जी, बाकी यहाँ का फ्रूटा फ्राटा का भी है बगीचा जी, सिट्रस फ्रूट जी मौसमी संतरा वगैरा आलू वगैरा अमरूद वगैरा सह मतलब हाँ दे कमर्शियल यूज तो नहीं रखे लेकिन करी भी सकते, लेकिन हाँ बंडी बुंडी के जड़े भी ऐसे हाँ नहीं
0: हाली भाई तो हाँ अपने खाने वास्ते जड़े रिश्तेदारियां दूरियां ना देने दाने ची है ना। अच्छा, तो यह दसा तुहां भी दुध भी तुहां अपने घरे दे उदी तक रखे की मतलब बेचते भी दुध?
1: हाँ दुध बेची भी दिंदे कने घर ताए भी रख।
0: तती दी ने तुहाड़ी किन्नी की उन्नी होई आदी
1: दूध ने तो हाँ दे भाई अपना घर का खर्च गाय का खर्च चली पौंदा कने सदा घा पानी जेड़ा सा तीस्ते दूध।
0: अच्छा तीस्ते निकल जांदा। अच्छा कने अपना
1: यूज भी कर लेंदा
0: अपना दूध दही जेड़ा सा बड़ी गल घरे दा ही हो जांदा है ना।
1: हां जी हां जी।
0: अच्छा तो तू हां आहां दे जेड़े श्रोता ने कने सह चांदे भाई कि फुल्लां दी खेती ते ना करनी है ना, तो उन्हां ताई तू हां क्या बोलना चाहेंगे भाई, एक घाटे दा सौदा है कि मुनाफे दा सौदा है? कई की इस वेले देखा तो पिछे दे बड़े सारे अहां दे अभियुक्त जेड़े शहर च नौकरियां करा दे है ना, कने तिन्हां दे जेड़े है रोजगार रोजगार जेड़े से कई की कंपनियां बंद हुई है ना, तो सह घर ग्राए आईए तो हूं सह घर ग्राए बैठे तो सह सोचा दे अहां अपना कुछ ना कुछ काम करिए है ना, तो तुहां तिन्हां क्या सलाह देना चाहेंगे? सह फुला की खेती करन मुनाफा है तिन्हां
1: बड़ा बारी ज्यादा मुनाफा।
0: हाँ जी,
1: कोई जरूरत ही नहीं है घर ते बाहर जाने दी, अगर कुछ वाली अपनी जमीन है तो मेरी समझ जो फुला दी जेड़ी खेती है इससे बड़ी है तो कोई नौकरी भी नहीं है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: क्योंकि मैं देख पाया 1000 स्क्वायर मीटर अकेला कर दी थी।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: लेबर का काम।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मतलब ए धुआं आइडिया लगाई लिया भी पर मंथ कम से कम 50,000 रुपये मैं घर बैठी कमा दी।
0: अच्छा
1: ठीक है, तीस कन्ने मतलब देखा मेरा घर का सारा काम चलिया कने कन्नी मेरी आमदनी 50,000 जेड़ी सेल लग गया,
0: सेल
1: भी मैं संभालना लगा।
0: हां जी हां जी,
1: तो मेरी समझ अजकल कने जेड़े नौजवान है ना
0: इन्हें
1: जो नौकरी दे पीछे दौड़ने दी कोई जरूरत नहीं है, अगर इन्हें वाली जमीन है तो ता मैं बोलती भाई इससे बड़ी है तो कोई काम ही नहीं है। बिजनेस जेड़ा है फुला दा बड़ा भारी बढ़िया बिजनेस है, इस जो ता चाहन भाई जितने ज्यादा जेड़े युवक है ना जेड़े नौजवान है से अगे हो अहां दे इथु डिस्ट्रिक्ट कांगड़ी डिस्ट्रिक्ट जेड़ा मंडी है जेड़े अप ओल्ड हिमाचल है इस च ता एक कम बड़ा भारी ज्यादा करा दे लोग मतलब नौकरी छड़ी की भी मतलब

0: इस कम कर दे।
1: बिल्कुल जी, ये तो हाँ ठीक लाया जी। फुला की खेती है जड़ा वो दे था इस एक ए भी हा कि मतलब जड़िया हाँ दुनिया फसल होनी है ने जड़ा सा जंगली जानवर जड़े इन सा बड़ा नुकसान पहुंचाते था। इस फुला की खेती है पर कोई प्रभाव तो नहीं पाता जी, बंदर हो या कुछ होर हो नुकसान तो नहीं पहुंचाते हाँ दी फसल।
0: इस एक तो नुकसान कुछ भी नहीं है क्योंकि
1: हाँ
0: ये जड़ी फसल जड़ी कारनेशन लगानी ये होंगी पोलियो से अंदर।
1: अच्छा अंदर होंगी।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: इस बिच तीन मैं थोड़ा दस्या पहले भाई फुला की किस्म बड़ी बारी है जी, एक लिलियम हुई है ग्लैड हुई है बारी हुई अंदर गेंदा बारी हुई अंदर,
1: हाँ जी
0: लेकिन थोड़ा कार्नेशन ऐसा है कार्नेशन लंबे टाइम दी फसल है
1: हाँ जी
0: तो इस विषय जेड़ा है से जब तक तुहा जी उखाड़ी के बाहर नहीं सट गया तो मतलब इसकी आमदनी जेड़ी है से चली ही रहनी, मतलब उखाड़ने ते बाद ही बंद होना इसकी भाई उखाड़ने बाद तुहा जो कुछ नहीं देना
1: जी
0: जब तक नहीं उखाड़ के तुहा 4 साल नहीं उखाड़ गए तो तुहा जो 4 साल 20 दिन दे रहना, लेकिन ये है भाई जेड़ी क्वालिटी जेड़ी
1: हाँ
0: दो
1: जी
0: तीन साल चोनी से चौथे साल लेनी होनी थोड़ा क्वालिटी च फर्क पौना
1: हाँ
0: इस
1: जी
0: जेड़ी। बाकी इस बीच डंगरा डुंगरा तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बोलियो से दिल्ली जी जी जी दिल्ली साई शहर च जेड़ा ये काम करना है तुम
1: हाँ
0: फूल
1: जी
0: दी फूल बेचने अंत ते तू थोड़ी दी क्वालिटी चाहिए
1: अच्छा
0: हाँ दा जेड़ा उत्पाद है तीस क्वालिटी चाहिए ता ही तुम जो जेड़ा से तू बढ़िया रेट मिलना।
1: अच्छा तो
0: हाँ
1: तुम
0: जी
1: ये तक लाया हूं तुम फुला की खेती करा दे तुम दे कुछ अपने अनुभव भी है इस कमे कर दे
0: हाँ
1: तुम एक
0: जी
1: दो साल तो हुई होने है ना
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी
1: तुम जड़ा नवयुवक अगर इसी इलाके का कोई करना चाहे तो सह कुण दी किस्मा का चयन करे जे तुम थोड़ी जी सलाह दे
0: मैं तो
1: हाँ
0: तीन जो ये सलाह देंगी भाई कोई भी युवक अगर इस काम करना चाहता है
1: जी
0: तो मतलब एक तो हाँ दे कॉन्टेक्ट नंबर लिखी लेने चाहे
1: हाँ जी तुम
0: मेरा।
1: बोली दिया
0: हाँ
1: अपना
0: जी मेरा
1: कॉन्टेक्ट नंबर।
0: कॉन्टेक्ट नंबर है 9 8 1 6 5
1: हाँ जी
0: 5 9 9 6 7।
1: एक बार फिर ते हाँ
0: हाँ
1: दे
0: जी
1: सुनने वाले बोली
0: हाँ
1: दिया।
0: जी 9 8 1 6 5
1: हाँ जी
0: 5 9 9 6 7।
1: कने तुम्हारा दा नाम।
0: मेरा नाम मीरा देवी है
1: हाँ जी
0: कने तुहा मेरा ग्रां दा नाम डेढ़
1: हाँ
0: है
1: जी
0: कने तुहा मतलब अगर कोई युवक नौजवान करना चाहता तो तुहा मुझे इस नंबर पर कॉल करा मैं तुहा जो जेड़ी मिंजो वाली जितनी भी मेरे वाली इस बारे में जो नॉलेज होना या जो भी ज्ञान होना मैं से तुहा जो
1: तुम्हारे
0: दसने
1: जेड़े भी
0: हाँ
1: अनुबंध है
0: जी
1: तुम
0: से मैं
1: जरूर
0: दसने
1: समझा
0: लगी
1: रहे है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल आ दे और भी मंजू कने जी और भी फार्मर लगे जुड़ना यंग ही मुंडा हूं पिछले साल ही जुड़िया
1: हाँ जी
0: नीचे बहनाते नीचे दा ही है
1: अच्छा
0: तीन ने मतलब 500 स्क्वायर मीटर च किता पहले
1: हाँ जी
0: हूं तीन 250 250 दे दो और लाए लगाना।
1: अच्छा
0: हाँ जी तसे हाँ कने जुड़े है मतलब हाँ तीस जो फुल कोऑपरेट किता मतलब कि भई तू मार्केट ते लेके बे मतलब धरती ते लेके ने जमीन बेचने उथू बेचने तक दा तीस दा
1: अच्छा
0: उत्पाद। हाँ जी
1: अच्छा एक गल और दसा तुहां जे कोई चाह दा बंदा करना काम है तो घट ते घट लागत कितनी की होनी है पहले साले तुसीं मतलब तिनी जड़ा से छोटी शुरुआत करनी अली तो घट ते घट कितना की खर्चा आई जाता है इस कम में।
0: एक्चुअली इस दी बिल्कुल तुहा बिल्कुल लो लेवल दी शुरुआत भी नहीं कर सकते
1: हाँ
0: क्योंकि
1: जी
0: देखा तुहा सामान भेजना दिल्ली
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: तो तीस बीच तुहा तो किराया भी लगना
1: हाँ जी
0: अगर जी एक ही पेटी च मन लिया हाँ एक ही पेटी च 50 बंडल पाई कर देने
1: जी जी
0: कने तुहा ते 10 ही बंडल हो दे किराया तो तुहा दा पेटी दा पूरी दा लगना
1: पूरा ही
0: चाहे
1: दा
0: तुहा
1: लगना
0: 10 पा चाहे तुहा 20 पा
1: ठीक
0: तो
1: गलाया।
0: कम से कम 500 स्क्वायर मीटर मतलब सवा करनाल एरिया जेड़ा
1: अच्छा
0: है
1: अच्छा
0: तीतने च तुहा जो जेड़ा ऐसा काम शुरू करना
1: शुरू
0: पौना
1: करना पौना
0: तीस
1: तेरने
0: ते
1: थे। हाँ
0: बाद जेड़ा तुहा स्टेप बाय स्टेप अपना काम बताई सकदे।
1: जी हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जी तीस ते
1: ठीक
0: काम नहीं तीस ते काम कर गए तुहा तो मतलब जेड़ा ऐसा है तुहा जो मतलब दिक्कत रहनी पेटी भेजने दी भी तीस तुहा जो क्या होना कि
1: मतलब
0: इन
1: थोड़ा बोलने का
0: इनकम
1: मतलब
0: जेड़ी
1: है कि
0: ऐसा
1: थोड़ा
0: कम होने
1: खर्चा ज्यादा लगना कने
0: इनकम
1: मुनाफा
0: कम। हाँ
1: घटी
0: जी
1: आना है
0: हाँ
1: ना।
0: जी
1: ठीक गला दे जी
0: हाँ
1: ठीक
0: जी
1: गला दे तो आज तुहां अपना जड़ा सा कीमती समय यहां दे किसान साथियों ताई जड़ा सा कढ़िया उदी ताई तुहां दा बड़ा बड़ा धन्यवाद।
2: जी तो किसान साथियों ये तो थी अहाँ दे भेंट वार्ता साढ़े उन्नत किसान मीरा देवी और कि तिना अपनी खेतीबाड़ी जेड़े से खासकर फुलों की खेतीबाड़ी जेड़ी से किस तरह करा करते और तिसते एक अच्छा मुनाफा भी लिया करते हैं। तो हाँ आशा करनी है कि साढ़े किसान भाई भी इस तरह दे कम कार अपने खेतीबाड़ी दे कम कार कन्ने कन्ने करन तो तिना जो जेड़े से एक अतिरिक्त आमदनी जेड़ी इसे
0: मिल
2: मिल सकती
0: सकती
2: है
0: है
2: ना
0: जी
2: जी।
0: बिल्कुल
2: तो इसके बाद हाँ फिर दे चलना लोक जनकार दी तरफ और सुनना एक प्यारा दे लोक गीत।
0: जी।

0: जी तो किसान साथी इसी प्यारे दे लोग गीत कन्ने हुण तुहानू दस दिए कि इस कार्यक्रम जो तुहानू तक पहुँचाने वास्ते तकनीकी सहयोग दिता सुनील कुमार और अदा कने प्रस्तुत करता
1: जितेंद्र पाल सिंह
0: जी। हुण अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
1: कने गुलाबो जो दे अनुमति।
0: अच्छा जी।

0: नमस्कार।
1: यह थे कार्यक्रम किसानवाणी FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
0: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में हिमाचल के किसानों व बागवानों के हितों की सुरक्षा पर दिया बल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल। कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए 3,400 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी। और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिमला में आज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत घरों को पूरा करने के लिए सरकार 30 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को समय पर इनका लाभ मिल सके। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए शिमला में हिमाचल हाट का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के नंगल खुर्द में आज निजी कंपनी के सहयोग से एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में जल संरक्षण, स्वच्छता, कृषि, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। इससे 6 गांवों के 9,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 2,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसी वर्ष सितंबर माह में आयोजित करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान संभावित ट्रेड डील को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का स्वागत है, लेकिन इनमें हिमाचल के बागवानों और किसानों के हितों की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आयात शुल्क घटाकर पहले ही कम कर दिया गया है, जिसे और नहीं घटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क में कटौती का सीधा असर प्रदेश के सेब उत्पादकों और किसानों पर पड़ सकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसे सभी मामलों पर गंभीर मंथन की जरूरत है, और जब भी प्रदेश के किसानों और बागवानों के हित प्रभावित होंगे, कांग्रेस सरकार उनकी आवाज मजबूती से उठाएगी और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
1: हम चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। यू के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के साथ भी होनी चाहिए, अमेरिका के साथ भी होनी चाहिए, सभी मुल्कों के साथ होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसमें हिमाचल के बागवान, हिमाचल के किसान के जो हित है उनको सुरक्षित रखना, ये हमारा उसमें दायित्व बनता है। चाहे वो स्टोन फ्रूट्स है, चाहे वो कल फ्रूट्स है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हर चीज में जहां से भी इसका इम्पोर्ट होता है या जहां से भी हिमाचल उसको और राज्यों में भेज रहा है, उसमें अगर बाहर से उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के बागवान को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर गहर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, कथित भ्रष्टाचार, पंचायत चुनावों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है।

0: आज धर्मशाला के डाढ़ चामुंडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से निराश है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।
1: हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, शिमला में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या कर दी जाती, देवभूमि हिमाचल प्रदेश

0: विद्यालयों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। शिमला में आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 158 विद्यालयों को CBSE पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 146 विद्यालयों को CBSE की संबद्धता प्राप्त हो चुकी है। रोहित ठाकुर ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 के दौरान 9,359 विद्यार्थियों को डॉक्टर YS परमार डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत टैबलेट प्रदान किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर समान रूप से ध्यान देने का आह्वान किया है। वे आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक, तकनीक आधारित और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए ऐतिहासिक सुधार लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने नई नवाचार नीति को मंजूरी दी है। सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीरता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने मॉनसून सीजन के दौरान संबंधित विभागों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए।
1: भारत सरकार की जो योजना है, अच्छी प्रोग्रेस हमको देखने को मिली। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये लक्ष्य रखा गया है कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उस तक भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके, उस दिशा में हमने अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, कामों को जल्दी हम उनका निपटारा करें।
0: प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर उनके सुपुत्र व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, विधायक हरीश जनार्था सहित कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रणौत ने आज कुल्लू जिले के चंसारी गांव में NHPC के सहयोग से समाज सेवी संस्था द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल वैन आधारित प्राथमिक व निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है। कंगना रणौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक योजनाएं चलाई हैं। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने HPCL प्रबंधन से बेघर परिवारों को एक मुश्त मुआवजा देने की मांग की है, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने HPCL के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर बेघर परिवारों से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया है कि हाउसलेस परिवारों को 75% मुआवजा एक मुश्त देने का प्रयास किया जाएगा।
2: हाउसलेस जो परिवार है, सबको जो है एक मुश्त में पैसा दे दो, ताकि गरीब लोग भी जो है अपना मकान लगा सके। MD साहब ने जो है हमें ये आश्वासन दिया है, जिन्होंने घर नहीं बनाए हैं उनको 75% जो है एक मुश्त में पैसा दिया जाएगा, जो हमारे को 28 लाख मिलना है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग की अहम भूमिका। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में हिमाचल के किसानों व बागवानों के हितों की सुरक्षा पर दिया बल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल। कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए 3,400 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी। और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला धर्मशाला हमीरपुर केंद्रों के साथ ही एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय अंब के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खाली पदों को भरने के लिए 18 से 35 वर्ष की पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर दिनांक 10 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वही महिला उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद हेतु आवेदन करने योग्य होगी जो इन शर्तों को पूरा करती होगी। शर्तें इस प्रकार से हैं, अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र फीडिंग एरिया का सामान्य निवासी होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास होना अनिवार्य है। विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिहस्तांक्षरित होना चाहिए। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2026 समय सायं 5 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके बाद किसी भी आवेदक अभ्यर्थी से आवेदक दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार वाले दिन दिनांक 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय व संबंधित पर्यवेक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सबरस की पहली प्रस्तुति हम लेकर आए हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल।

अभी आपने सुना अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई इस गजल को। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति भूपेन हजारिका की आवाज में।

भूपेन हजारिका की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये सबरस कार्यक्रम की प्रस्तुति। सबरस कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा कटोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति विनोद राठौड़, श्वेता पंडित के युगल स्वरों में।

अभी आपने सुना विनोद राठौड़ श्वेता पंडित के युगल स्वरों में गाया ये गैर फिल्मी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जोश बरार की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत।

जोश बरार व साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये पंजाबी गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलिशा चिनॉय की आवाज़ में गाया ये गीत।

अलीशा चिनॉय व साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गैर फिल्मी गीत अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा कटोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

अभी आपने सुना सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर की आवाज़ों में गाया ये विदाई गीत, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लकी अली की आवाज़ में।

लकी अली की आवाज में गए इसी गीत के साथ हमारा आज का अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब रस अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर, हेमा सरदेसाई, मनहर के मिले जुले स्वरों में ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या व रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के

0: में फाइनल में पहुंची और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांग संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया।

0: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95

0: रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the 3rd India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
3: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister.

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं गीतकार असद भोपाली द्वारा लिखित कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। जी हाँ श्रोताओं, असद का जन्म भोपाल में 10 जुलाई 1921 को हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अहमद खान था और असद उनकी पहली संतान थे। उनका जन्म नाम असादुल्लाह खान था। उन्होंने फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। असद अपनी शायरी के चलते धीरे धीरे असद भोपाली के नाम से मशहूर हो गए। 28 साल की उम्र में ये गीतकार बनने के लिए मुंबई आ गए, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा। इतना संघर्ष करने के बाद उन्हें पहचान मिली 1990 में आई फिल्म मैंने प्यार किया के इस गीत के साथ, कबूतर जा जा जा। इस गीत को लिखने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: असद भोपाली को मैंने प्यार किया के लिखे गीत कबूतर जा जा के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। हालांकि तब तक वे पक्षाघात होने से अपाहिज हो गए थे। 9 जून 1990 को उनका निधन हो गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता

0: क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है?
1: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का वो सामान्यतः ठंडा रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहां जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब भी आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एल नीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ देन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख

0: के आए हैं, उसमें करीब में जो एवरेज हमारा जो स्टोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है। तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है, इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरी पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पैसे सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है, एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है
1: जी,
2: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स एक चीज, और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको गुड वेदर

0: प्रैक्टिसेस एंड बैड प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको, तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बता कि भाई अलिनो है, इस बार मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो है बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है?
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वेराइटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वेराइटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात करिए, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम,

0: बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहाँ पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पोन्ड्स हैं या लेक्स हैं, उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है। तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी, वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के।

0: कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूँ वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था। और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई, मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइस देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सेप्टेम्बर उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहां जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदल

0: रहेगा। चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं, तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद। धन्यवाद।
0: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जो कि आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र से रिले किया गया FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं रूपक।

0: इतिहास गवाह है, वर्षों से मनुष्य मानवता के उत्थान में अपना योगदान देता रहा है। बलिदान के अद्भुत स्वरों से मानवीय इतिहास के पन्ने गुंजित हैं। परोपकार के उच्चतम क्षितिजों एवं सोपानों को तय करने की अद्भुत मिसाल जो चंबा में मिलती है, उसका उदाहरण संभवतः संपूर्ण मानवीय इतिहास में कम ही मिलता है।
1: अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए बलिदान की बात बिरले ही कर पाते हैं। चंबा के शाही परिवार ने प्रजा के कल्याणार्थ न केवल अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया, अपितु अपनी प्रजा तथा रियाया के लिए अन्यतम बलिदान भी दिया, जिसकी मिसाल मानवता के मानस पटल पर आज भी अंकित है।
0: चंबा राज्य की स्थापना से पहले ये रियासत अनेक रजवाड़ों और ठकुराइयों में बटी थी। इनके कर्णधार राणा और ठाकुर कहलाते थे। इनका इतिहास अनेक ताम्र पत्रों में बिखरा पड़ा है।
1: राजा मेरू 680 ईस्वी में मेरू वर्मन के नाम से सत्तारूढ़ हुआ था और अपने पराक्रम तथा समझ से उसने न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपितु अनेक देवालय और शक्तिपीठ भी स्थापित किए।
0: उसी वंश परंपरा में राजा साहिल वर्मन नामक एक शक्तिशाली सूझबूझ वाला और धर्म परायण राजा हुआ। इसके राज्यकाल में राज्य की सीमाओं में बढ़ोतरी तो हुई ही, उसने अनेक देवालय तथा मंदिर भी बनवाए।
2: महाराज, आपकी चिंता का कारण मैं हूं। हाँ महाराज, स्त्री की शोभा पति और पूर्णता संतान के साथ ही होती है, पर मेरे भाग्य में संतान का सुख अचानक का पूर्ण होगी हमारी इच्छा।
3: महाराज, समय बलवान है और हम सब भाग्य के हाथ के खिलौने। समय से पहले और भाग्य से अधिक हमें कुछ भी नहीं मिलता। काश कोई होता जिसे अपना यह राजपाट सौंप कर मैं अपने कार्य से मुक्त हो जाता।

0: एक इच्छा रह गई है।
1: संयोग से भरमौर में योग में निपुण 84 साधुओं का आगमन हुआ। राजा रानी ने न केवल उनकी सेवा ही की, अपितु वो जहाँ ठहरे थे उस स्थान पर उनके नाम से मंदिर भी बनवाए। ये 84 मंदिर थे, अतः इस स्थान का नाम अहाता 84 रखा गया। साधु राजा रानी की सेवा भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया।
0: राजन, निसंदेह तुम्हारे जैसा योग्य शासक आज कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी धर्म परायणता और निश्चल सेवा भाव से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। बस यूं ही सदैव धर्म का पालन करते रहना, तुम्हारे मन का संशय दूर होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।
2: साधु महाराज के आशीर्वाद से राजा के यहाँ 10 बेटे और 1 बेटी हुई। एक ही होने के कारण बेटी अत्यंत प्रिय और लाडली थी, खिलती कली की मासूम, कोमल और अति सुंदर। उसका नाम चंपावती रखा गया।
1: जब इस राज्य की राजधानी भरमौर से वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित की गई, तो इसका नाम चंपावती के नाम पर चंपा रखा गया, जो कालांतर में चंबा हो गया।
2: इस नवनिर्मित नगर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। नगर को मुख्य नदी धारा के साथ जोड़ती ढकियां थी। इनके साथ साथ मंदिर स्थापित किए गए थे। प्रजा जो धीरे धीरे भरमौर से आकर यहाँ बस गई थी खुशहाल थी, पर पीने वाले जल की बड़ी दिक्कत थी। लोगों को एक लंबा सफर तय कर नदी तक पानी भरने जाना पड़ता था।
1: चंबा नगरी के ऊपर ऊंचाई पर स्रोथा नामक एक जल स्रोत था। स्थापत्य कला में निपुण विद्वानों के सुझाव पर एक कुल के निर्माण से पानी को नीचे नगर तक लाने की योजना बनी।
2: नगर की सुविधा के लिए ये कार्य हो रहा था। सभी लोग इसमें जी जान से जुट गए। बहुत शीघ्र कार्य संपन्न हो गया। एक शुभ दिन देखकर राजा, दरबारी एवं नगरजन स्रोथा पहुंचे।
3: नगरवासियों, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हमारे कुशल कारीगरों और मेहनती मजदूरों ने मिलजुल कर हमारे जीवन को आज खुशियों से भर दिया है। आज हमारा सपना पूरा होगा, नगर के हर घर को पानी मिलेगा।
4: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: महामंत्री, अब देर किस बात की? पूजा अर्चना का कार्य शीघ्र संपन्न करें और कुहल में पानी छोड़कर हमारा और हमारी प्रजा का दामन खुशियों से भर दें।
4: जो आज्ञा महाराज।

0: पानी कुएं में छोड़ दिया गया। पानी को अपने स्वभाव के अनुसार नीचे की ओर बहना चाहिए ना, बहता है मगर कुछ ही दूरी पर धरती में समा जाता है। फिर प्रयास किया गया मगर ये भी असफल ही रहा। बार बार प्रयास मगर यही लगता कि कुल ही जैसे युगों से प्यासी हो।
1: सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर वजह क्या है। वो उत्साह, वो मेहनत एक ही पल में जैसे सब समाप्त हो गया। चल देवता रुष्ट है, ये कुएं कहीं अधूरी तो नहीं, या हमारा प्रयास अपूर्ण तो नहीं, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं ये नगर ही अभिशप्त हो।
0: प्रश्न से केवल प्रश्न ही निकलता। सांझ ढल गई, पंछी अपने अपने पतेरों की राह तलाश रहे थे, थके हाथ

0: महामंत्री और इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों, आप सभी स्थिति से अवगत हैं। यूं तो हमारे राज्य में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली है, लेकिन पानी के लिए हमारी प्रजा बहुत दुखी है। हमने भरपूर प्रयास किया कि इस जल संकट को दूर किया जाए, लेकिन ना जाने हमारे प्रयास में कहां कमी रह गई।
1: नहीं महाराज, ना आपके प्रयास में कमी रही और ना ही हमारे राज्य के श्रमिकों ने कोई कमी रखी।
0: तो फिर क्या बात है, हमारी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। ना जाने हमसे कौन सा पाप हुआ है, हमारे किस कर्म की सजा हमारी प्रजा को मिल रही है।
1: महाराज, आपके राज्य में चारों ओर सुख सुविधाएं हैं, नगरजन शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पानी का यह संकट निश्चय ही किसी अनहोनी घटना का संकेत है, जिसका पता केवल ज्योतिष द्वारा ही लगाया जा सकता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो राज्य ज्योतिषी को बुलाकर इसका समाधान करवाया जाए।
2: हाँ महाराज, हमारी भी यही राय है।
0: महामंत्री, राज ज्योतिषी को इसी समय राज्यसभा में आमंत्रित करें।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो। आदेश करें महाराज, मैं आपका और इस राज्य का राज ज्योतिषी आपके लिए क्या कर सकता हूं।
0: आप जानते ही हैं राज ज्योतिषी, हमारी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। पानी के इस घोर संकट को कैसे दूर किया जाए, हमारा तो कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। राजपुरोहित भी इस विषय में कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अब आप रमन लगाकर क्या कीजिए कि क्या होने वाला है।
3: जो आज्ञा महाराज, मैं अभी रमन लगाता।

0: बात बहुत। ये भी नहीं, ये क्या है? कुछ मालूम नहीं हो रहा है। महाराज, महाराज क्षमा करें, क्षमा करें महाराज, कुछ मालूम नहीं हो रहा है।
1: मुझे तो यूं लग रहा है जैसे जैसे मुझे मेरी विद्या धोखा दे रही है। कुछ भी निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है महाराज।
0: हे प्रभु, मैं क्या करूं
1: महाराज? आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं।
2: कहो महामंत्री।
1: हालांकि राजपुरोहित और राजज्योतिषी भी इस विषय पर कुछ निश्चित नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम सभी का और प्रजा का भी यही मानना है कि शायद जल देवता रुष्ट हैं। कोई दैवीय शक्ति ही कोहल में जल प्रवाह को रोक रही है। अतः जल देवता को खुश करने के लिए किसी यज्ञ का आयोजन किया जाए तो।
2: महामंत्री, आप सभी और हमारी प्रजा ने मिलजुल कर जो निर्णय लिया है वो हमें मान्य है। अतः इस यज्ञ का आयोजन यथा

0: तैयारी शुरू हुई और पूर्ण आहुति का समय आया। शायद अब जल देवता प्रसन्न होंगे और दूर होगा ये जल संकट। लेकिन उसी रात रंग सुनैना को कुलदेवी की दर्शन हुए।
1: सुनैना, सुनैना, क्यों दुखी हो तुम? माँ, महाराज का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी प्रजा के दुख से महाराज व्याकुल है। पानी का अकाल पड़ा है माँ, कुहल में पानी छोड़ा जाता है और वो धरती में समा जाता है और कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है माँ। न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई है। सुनैना, जलधारा बलिदान मांगती है, बलिदान, राज परिवार से बलिदान। क्या कहा? कुहल में पानी आएगा लेकिन

0: अधिष्ठान
1: महाराज।
0: महाराज उठिए जरा।
1: क्या सुनैना, बहुत घबराई हुई हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या कोई
0: सब डरावना नहीं था?
1: तो फिर क्या बात है, तुम इतने घबराई हुई क्यों हो? आखिर बात क्या है?
0: सब डरावना नहीं था महाराज। कुलदेवी ने दर्शन दिए, कहा कि जलधारा बहेगी, अवश्य बहेगी, अवश्य बहेगी जलधारा।
1: क्या कहा कुलदेवी? जलधारा बहेगी, हमारी प्रजा का दुख दूर होगा।
0: हाँ महाराज।
1: कब? कब?
2: और फिर शुरू हुआ एक इंतजार, पानी का। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निरंतर बहती एक जलधारा, जैसे एक जीवन रेखा ही हो।
3: जलधारा तो तभी बहेगी ना, जब राज परिवार से कोई बलिदान देगा। तो कौन देगा बलिदान? राजा?
0: नहीं नहीं, राजा के बिना प्रजा का क्या होगा? और मेरा, क्या मैं महाराज के बिना जीवित रह पाऊंगी? उनके बिना मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा? महाराज का बलिदान? नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: तो शहजादे की बलि?
0: चुप रहो तुम, अभी उसने जीवन में देखा ही क्या है? अभी तो वो जवान हुआ है, उसकी शादी होगी, राज्याभिषेक होगा।
3: और चंपावती?
0: चंपावती, अभी तो उसने अपने जीवन का पहला पड़ाव से भी पार नहीं किया। वो तो हम सबकी आंखों की ज्योति है। और फिर कन्या की बलि? पाप, महापाप, भला ये कैसे हो सकता है?
3: तो फिर कौन देगा बलिदान? कैसे दूर होगा ये जल संकट?
0: मैं, हाँ, मैं दूंगी बलिदान। मेरा बलिदान होगा। सुहागन बनकर दुनिया से जाऊंगी मैं। अपने राज्य के लिए मेरा जीवन समर्पित होगा। भला इससे बेहतर पल जीवन में और कौन सा हो सकता है? मेरा बलिदान होगा, मेरा। लेकिन मैं क्या करूं? स्वप्न की ये बात राजा को नहीं बताती हूं तो अन्याय होगा, विश्वासघात होगा। और अगर बताती हूं तो किसी ना किसी को तो बलिदान देना ही होगा। क्या करूं मैं महाराज?
1: क्यों उदास हो सुनैना, क्या सोच रही हो?
0: महाराज वही कुलदेवी वाली बात।
1: हाँ सुनैना, कुलदेवी ने कहा है तो हमें पानी अवश्य मिलेगा।
0: लेकिन?
1: लेकिन क्या
0: महाराज? देवी ने स्वप्न में कहा था।
4: सुनैना, जलधारा बलिदान मांगती है, राज परिवार का बलिदान, जल अवश्य मिलेगा। सुनैना, जलधारा बलिदान मांगती है, बलिदान मांगती है।

0: बस इतनी सी बात है, तुम महारानी होकर इतनी सी बात से चिंतित हो गई?
1: बलिदान से नहीं महाराज, इस बात से चिंतित हूँ कि मेरे बाद आप मेरे बिना कैसे रहेंगे। शहजादा माँ किसे कहेगा? और
0: तुम्हें माँ कहेगा वो, तुम ही उसका ख्याल रखोगी, तुम ही उसका राज्याभिषेक करोगी और उसके सर पे सेरा बांध कर उसे तेरा बनाओगी। प्रजा को राजा भी मिल जाएगा और शहजादे को माँ भी।
1: आखिर आप कहना क्या चाहते हैं महाराज?
0: सुने ना, कुलदेवी ने राज परिवार से बलिदान मांगा है ना, तो मैं दूंगा बलिदान। सीधी सी बात है, राजा प्रजा के लिए होता है, उसी का होता है। और मैं अपना जीवन फूंक चुका हूँ,
1: लेकिन
0: जितना भी उस जीवन का कार्य था वो संपन्न कर चुका हूँ, सभी सुख सुविधाओं को अंगीकार कर चुका हूँ। अब कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया है। शहजादा भी किशोरावस्था को पार कर अपनी जिम्मेवारी को खूब निभा रहा है, अतः कोई चिंता बाकी नहीं रही। मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी, चलती उम्र में मेरा शरीर मेरी प्रजा के काम आए।
1: नहीं नहीं महाराज, आप मेरा ये अधिकार नहीं छीन सकते। आपके बिना ये सब मेरी किस काम का? और आपके बिना तो मैं चाहकर भी जीवित नहीं रह पाऊंगी।
0: बस बस सुनैना, अब आगे कुछ मत कहो, इस बात का फैसला दरबार में ही होगा।
1: हाँ, लेकिन आप मुझे दरबार में अपने पक्ष रखने देंगे तभी ना?
0: हाँ हाँ, दरबार में तुम भी अपना पक्ष अवश्य रखना। जो फैसला होगा वही हमें स्वीकार्य होगा।
1: ठीक है। पहली शाम रात में ढल गई। रात भर रानी के मन में यही बातें आती रही, जलधारा, बलिदान, राज परिवार से, महाराज, शहजादा और नन्ही चंपावती, प्रजा का दुख, पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्षरत लोग। मोती चिंतित हो गई, सुबह न जाने दरबार में क्या निर्णय होगा।
2: एक भोर सुहानी बदल गई। रानी ने वजीर धौल को बुलाकर कहा,
1: वजीर जी, आपको इसलिए बुलाया है कि अभी जो दरबार बुलाया जा रहा है मुझे उसमें जाना है। मैंने महाराज से अनुमति ले ली है। आज एक बहुत आपद घड़ी आ पहुंची है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज उठने वाला है और इसमें मेरा भाग लेना अति आवश्यक है।

0: आप सभी जानते हैं कि जल संकट के संबंध में हमारे सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। हर आशा की एक किरण जागी है। हमारी कुल देवी ने महारानी को स्वप्न में दर्शन दिए और बलिदान मांगा है।
1: महाराज महाराज, मैं अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, ये अवसर मुझे दीजिए। महाराज, महाराज आप जिसे भी कहें वो तुरंत तैयार हो जाएगा। महाराज आप आदेश करें और इस संकट का निवारण करें।
0: नहीं नहीं नहीं, आप सब निश्चिंत हो जाएं। कुल देवी ने राज परिवार से बलिदान मांगा है। हाँ, राजा होने के नाते मेरा यह उत्तरदायित्व बनता है कि प्रजा के संकट निवारण के लिए मैं अपना जीवन बलिदान करूं। आप समस्त सभासद एक मत से मुझे इस परोपकार में आहुति देने की अनुमति प्रदान करें।
1: नहीं महाराज, हम ये निर्णय नहीं कर सकते। आप तो हमारे पालनहार हैं। आपके बिना राज्य में अराजकता फैलेगी। हम अपने स्वामी का जीवन बलिदान नहीं कर सकते। महाराज,
2: मेरा जीवन आपकी अमानत है। आप मुझे इसी समय आज्ञा दें और प्रजा के संकट को दूर करें।
0: नहीं शाहजादे,

0: आज के लिए भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता।
1: पिताश्री, मैं भी तो आप ही का अंश हूँ। कुलदेवी ने बलिदान मांगा है तो माँ के चरणों में मुझे भेंट कर दो। मेरा जीवन आपके काम आए तो इससे अच्छा क्या होगा।
0: नहीं पुत्री, तुम तो हमारे जीवन की ज्योति हो। हम सबके होकर एक नन्ही गली तोड़ दी जाए, एक कन्या का बलिदान, और बेटी तो बेटा के घर में अमानत होती। ये सोचना भी बात है, ये नहीं हो सकता। मैं फिर कहता हूँ, आप सब मेरा यह अधिकार मुझसे ना छीने।
2: और महाराज, मेरा अनुरोध आपसे है, मेरे साथ अन्याय ना करें। महाराज, मेरा भी तो कोई कर्तव्य है, अधिकार है। आप मेरी ममता का गला नहीं घोंप सकते और ना ही मेरी मांग सुनी कर सकते हैं। पति के बिना नारी का जीवन सूना हो जाता है और पुत्र के बिना उसका आंचल सूना हो जाता है। आप ना होंगे तो ये वैभव, ये सुख, ये मेरे किस काम का महाराज। और यो भी कुलदेवी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं अपना परिवार छोड़कर आपके परिवार में शामिल हुई हूँ। आप मुझे पराया मत कीजिए महाराज। ये जीवन आप ही का है, आपके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मायने नहीं। मेरी विनती है महाराज, मुझे अपना बलिदान करने की अनुमति देकर सुहागिन ही रहने दे, और सुहागिन के रूप में ही इस दुनिया को छोड़ने की अनुमति दे।
3: ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये

राजा का मन उदास था और आंखें नम। रानी सजी संवरी सखियों के साथ नंगे सिर पलाता गांव की ओर चल पड़ी, जहां स्रोथे का जल रुका पड़ा था। प्रजा के कल्याण के लिए वही रानी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और उसी समय आसमान पर बादल घिर आए, बिजली चमकी और रानी सुई एक याद बनकर रह गई।

0: वो हर वर्ष जीती है और हमारे दिलों को उद्वेलित कर जाती है।
1: राधा ने रानी की स्मृति में स्वेथे से कुछ नीचे, जहाँ से रानी ने आखिरी बार चंबा शहर को पालकी रुकवा कर देखा था, वहीं एक धर्मस्थल का निर्माण करवाया, जहाँ हर वर्ष चैत्र मास में मेला लगता है। इस मेले का आगाज एक लाल रंग की पालकी से होता है। इस पर रानी के प्रतीक के रूप में रानी का मुखौटा रखा जाता है। राजघराने के लोग तथा गणमान्य व्यक्ति पालकी को नगर की सीमा तक छोड़ने जाते हैं। इस पालकी के पीछे अपने पारंपरिक अलंकरणों से सज्जित महिलाएं रानी सुई की गाथा गाती हुई चलती हैं।

अभी आपने सुना रूपक, जो कि चंबा की रानी सुई पर आधारित रहा। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति टावर हाउस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत की पहली प्रस्तुति आपने सुनी। लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म का नाम था टावर हाउस। शब्द रचना असद भोपाली की थी। कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार के युगल स्वरों में रूप तेरा मस्ताना फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में अभी आपने सुना रूप तेरा मस्ताना फिल्म का ये गीत। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का ये गीत, आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

0: अभी आपने सुना डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पारस मणि फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में।
1: वो जब याद आए बहुत

अभी आपने सुना पारसमणि फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं नागिन फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत जो आप सुन रहे हैं वो अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में

किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि AI के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।